फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों का समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Oh. ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, जीवन में गिरना बुरा नहीं, गिरकर फिर उठना सबसे बड़ी हिम्मत है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 335। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए इस श्रृंखला का 8वां भाग। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन, संवादिका है ममता सिंह और संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है दीपा महेश्वरी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। नौ बजकर 30 मिनट पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री राजश्री पर। आलेख और स्वर जी शाम का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए आज के मेहमान फिल्म लेखक निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग है रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। यादों की महफिल सजेगी 12:05 से। सुरीला सफर तय करेंगे 1 बजे से। दोपहर 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे हेलो फरमाइश। संपादन है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 7 बजे आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम और उसके पहले 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए गायक भवदीप जयपुरी वाले से निमी मिश्रा की बातचीत, प्रस्तुति कांचन प्रकाश। 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटिका हम किसी से कम नहीं। लेखन है चंद्र किरण सुनार किसे का और निर्देशन है चंद्रप्रभा भटनागर का। आठ बजकर 15 मिनट पर सुनिए रात्रि चित्रलोक आपके लिए कार्यक्रम रात 9 बजे। 10 बजे सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ।

वानर और आसुरी सेना का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वानर भालुओं का संहार करते रावण को लक्ष्मण ने चुनौती दी। रावण तो अपने पुत्र घाती को ढूंढ ही रहा था। उसने उन पर प्रहार आरंभ कर दिए। लक्ष्मण ने उसके लाखों अस्त्र काट डाले, उसके रथ को वाणों से खंडित कर दिया। 100-100 वाण उसके 10 सिरों पर मारे और उतने ही वाण उसकी छाती में। रावण मूर्छित हो गया, किंतु मूर्छा अवस्था से उठते ही उसने ब्रह्मा से प्राप्त अस्त्र लक्ष्मण को छाती में मारा, जिसके प्रहार से वे धरती पर गिर पड़े। रावण ने उन्हें उठा लेने की चेष्टा की, किंतु शेषनाग के रूप में जिसने पूरे भुवन को एक तिनके के समान अपने फन पर उठा रखा है, उसे भला रावण कैसे उठा सकता। रावण को लक्ष्मण के शरीर को उठाने का प्रयत्न करते देख हनुमान जो आगे आए तो उसने उन पर घूंसे से प्रहार किया। अपने को संभालते हुए हनुमान ने उसे जो घूंसा मारा तो रावण एक बार फिर मूर्छित हो गया। इस बार मूर्छा टूटने पर रावण यज्ञ करने के लिए अपने महल की ओर चल पड़ा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 335।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। श्रोताओं, जिनके कंठ में संगीत है, शब्दों में साहित्य है, अभिनय में जीवन है और साधना में अपने देश की आत्मा बसती है, ऐसे कलावंत का सानिध्य पाना किसी नहीं अच्छा लगेगा। शेखर सेन हमारे विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और तबले पर इनका साथ निभा रहे हैं आशीष विश्वास जी, जिनकी उंगलियों की थाप ऐसी है कि देखते ही बनती है। तो हम आशीष विश्वास जी का एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। आशीष जी नमस्कार। शेखर दादा एक बार फिर से स्वागत है आपका, नमस्कार।
2: नमस्कार और सभी संगीत सरिता के श्रोताओं को एक बार पुनः प्रणाम। आज की कड़ी में मैं चाह रहा हूँ आपको एक और भारतीय संगीत की एक महान विभूति से
1: जी
2: आपका दोबारा परिचय करवाऊं, और इनका नाम था पंकज कुमार मल्लिक या पंकज मल्लिक
1: जी जी,
2: जिन्होंने न केवल बांग्ला में और हिंदी में संगीत निर्देशन दिया और कई अमर गीतों की रचना की, बल्कि इन्होंने तमिल फिल्मों में भी संगीत
1: जी,
2: दिया
1: जी जी।
2: आप उस युग की सोचिए कि जिस समय 50 की शुरुआत में भारत में इस तरह का आदान प्रदान हो रहा था कि एक बंगाल के संगीतकार जाके तमिलनाडु में संगीत दे रहे थे
1: जी।
2: तो उनकी एक फिल्म है उनके संगीत निर्देशन में, 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था यात्रिक
1: जी,
2: इसका एक गाना था। मुझे ये रचना बहुत पसंद है, ये मेरे जन्म से 9 साल पहले की बंदिश है, लेकिन फिर भी कुछ रचनाएं होती हैं जो सुन सुन करके आपको एक अलग अनुभूति होती है
1: जी।
2: तो ये गाना था इस तरह का।

0: राग विहाग पर ये रचना आधारित है
1: जी,
0: लेकिन इसको फिल्म यात्रिक में गाया था, उस समय गायक थे बीरेन बल
1: जी,
0: बंगला में बीरेन बॉल हम लोग कहेंगे, तो बीरेन बल जी की आवाज में। मैं चाहूंगा कि सारे श्रोता अब जो ओरिजिनल गाना था
1: जी,
0: वो सुनिए। राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।

0: शेखर दादा, राग विहाग का आपने जिक्र किया, तो राग विहाग के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे और कुछ गाकर बताएंगे?
1: राग विहाग हमारे उत्तर भारतीय संगीत का बड़ा ही प्रसिद्ध राग है, और अगर कोई गायक ये कहे कि मुझे विहाग नहीं मालूम
0: जी,
1: तो पक्का जाने कि उन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा। तो ये उस तरह के रागों में से जो हमारे यहाँ कुछ राग बड़े कहे जाते हैं
0: जी,
1: तो जिनको आप 2 घंटे 3 घंटे गा सकते हैं, विहाग, यमन, दरबारी, मालकौंस, उस श्रेणी का ये राग है।

0: दादा आपने राग विहाग के बारे में बड़ी ये जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, अब बताइए अब क्या सुनवाए अपने श्रोताओं को।
1: जैसे हमारी हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में राग विहाग बहुत महत्वपूर्ण राग है, वैसे ही एक राग बड़ा ही मधुर है और उसका नाम है राग श्री।
0: जी
1: हमारे यहाँ इस राग को बहुत कठिन राग भी माना गया है और संगीत में जो तंत्र साधना होती है या माँ की उपासना होती है, शक्ति की पूजा, उसमें जिन रागों में हम साधना करते हैं उसमें से एक श्री राग है।
0: जी।
1: बड़ा सिद्ध राग है और जिन गायक की आवाज में आपको मैं ये रचना सुनाने जा रहा हूँ उनका जन्म हुआ था 1921 में और उनका देहांत हो गया था दुर्भाग्य से 1955 में।
0: जी
1: तो सिर्फ 34 वर्ष वो जिए और ये थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के एकमात्र सुपुत्र, डीवी पलुस्कर जी के नाम से हम उनको जानते हैं। और बहुत छोटा सा जीवन होते हुए भी, जबकि वो जब बड़े हो रहे थे तब तक उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उन्होंने संगीत की शिक्षा पाई अपने पिताजी के ही एक शिष्य विनायक राव पटवर्धन जी से।
0: जी जी
1: और फिर उन्होंने जितने भी हमारे पास आज रिकॉर्डिंग्स हैं पलुस्कर जी की, चाहे वो पायो जी मैंने हूँ या ठुमकी चलत रामचंद्र हो या चलो मन गंगा जमुना तीर हो, जानकी नाथ सा, ये सब डीवी पलुस्कर जी की आवाज में है। पर मूलतः जो डीवी पलुस्कर जी थे वो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के गायक थे और उनकी एक बंदिश बहुत ही मशहूर है राग श्री में, और वो मैं चाहता हूँ, राग श्री बड़ा सुंदर राग है, उसका छोटी सी झलक आपको सुना रहा हूँ।
0: जरूर सुनाए।

मैं चाहूंगा कि दिलीप पलुस्कर जी के स्वरों में आप सुने, अद्भुत अनुभूति आपको होगी और आपको लगेगा कि सचमुच में संगीत का जो आध्यात्मिक रंग होता है, जिसको हम नाद ब्रह्म कहते हैं, उसकी अनुभूति आप कर सकेंगे। हरि के चरण।

0: और अब हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि इस अद्भुत रचना के बाद हमें अनुमति लेनी होगी अपने श्रोताओं से. लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार.
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और कल हम मिलेंगे अगली कड़ी में.
0: जी, शताब्दी की भक्ति रचनाएं. आज आपने सुनी इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी. आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन. तबला संगत आशीष विश्वास. तकनीकी सहायक HR पाटले. संपादन सहयोग झरना सोलंकी. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक. अब दीजिए अनुमति. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैरस्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यान परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हैं। आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा कल काशी में संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में आयोजित समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में काशी और पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव देश के सामने है। भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपाय करने का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। इराक समर्थित सशस्त्र समूह हुती ने सऊदी अरब की 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसने रियाद के उत्तर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया और यमन की राजधानी सना में उस प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल सऊदी राजधानी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस बीच हुती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों दुबाब, अल जदीद और बाब अल मंदीब जलडम मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल इम्पेंट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि इस वर्ष एक्सरसाइज वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय अभ्यास ड्रोनाथन और जारी ऐतिहासिक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति सहित कई महत्वपूर्ण गतिविधियों के जरिए वायुसेना अपनी युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मोचोवा का सामना निकोला बार्तुनकोवा से और मीरा एंड्रीवा का मैच एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress or IMC at Yashobhoomi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today, chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. The 94th Indian Air Force Day is being celebrated today. The theme for this year's celebration is Indian Air Force Infallible, Impervious and Precise. In his message through Akashwani yesterday, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh said, "The Indian Air Force is always ready to protect the nation with alertness and firm commitment." He said, "Last year, Operation Sindoor reaffirmed the pivotal power of integrated air operations, demonstrating its capability and capacity to defend country's sovereignty." The Seva Sankalp bike yatra from Vadnagar to Kashi, which had started on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday on 17 September, successfully concluded yesterday. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath addressed the concluding ceremony of the bike Seva yatra from Gujarat's Vadnagar to Kashi in the presence of BJP National President Nitin Rubin. Yogi Adityanath highlighted how Kashi changed in past 12 years and UP in last 10 years. Addressing bikers and guests from Vadnagar who had come to Kashi, the Chief Minister congratulated PM Modi on successfully completing 25 years in public life on behalf of the people of the state. He said, "This journey from Vadnagar to Kashi is an opportunity to honour PM Modi's 25 years of Seva Sankalp." External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Koth Vivoar's Vice Prime Minister and Defence Minister Tene Virahima Rathara in Abidjan last night. In a social media post, Dr. Jaishankar said the two sides discussed their growing defence partnership underpinned by mutual trust, capacity building and shared interests. They also exchanged views on opportunities to further strengthen cooperation in defence and counter-terrorism, including through training, capacity building and enhanced institutional exchanges. The External Affairs Minister also held a comprehensive discussion with Koth Tivuar Minister of State for Foreign Affairs and International Cooperation, Niale Kaba. India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night. Tensions in the West Asia escalated after Iran-backed armed group Houthi attacked two airports in Saudi Arabia, killing three people and injuring more than 30 others. In table tennis, Indian paddlers Manoj Shah and Dhiraj Chitani created history by becoming the first Indian mixed doubles pair to reach the semi-finals of WTT Grand Smash after beating Romanians Eduard Ionescu and Bervet Soch 3-0 at the China Smash in Beijing yesterday. The fifth-seed Indian duo won the quarter-final 11-9, 13-11, 11-3 to secure a place in the last four. And that is the end of this news bulletin.

0: हम जन जन तक सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई में उद्योगपतियों से निवेश पर संवाद करेंगे और खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर और गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने स्टेट पार्टनर के रूप में प्रदेश के टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन अब केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं है बल्कि रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास का माध्यम भी बन गया है। उन्होंने नागरिकों से पर्यटन के लिए देखो पूरा देश पर सबसे पहले मध्य प्रदेश का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि अब चंबल नदी पर गांधी सागर बांध के पास दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज पावर प्लांट स्थापित होने जा रहा है।
1: केन बेतवा, पार्वती काली सिंह और अब तो अभी 4 महीने बाद ही पंप स्टोरेज का वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर संयंत्र मध्य प्रदेश में चालू होने वाला है। चंबल के पास, चंबल की नदी के बहुत बड़ा गांधी सागर डैम है। अपने यहाँ ऐसे बिजली के बनाने के लिए पंप स्टोरेज की एक नई तकनीक चाहिए जिसके बलबूते पर जो पानी एक बार रहेगा वो पानी बार बार रिसाइकल करते हुए आपकी बिजली लगातार बनती जाती, वो बिजली बनाते हुए यंत्र आपने टूरिज्म के माध्यम से भी काम में ले सकते।
0: प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को पात्र लोक सेवकों को समय पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय सीमा में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंध में सभी विभागों, संभायुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतः सितम्बर से नवम्बर के बीच आयोजित करना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक ने कल रेपो दर में 25 आधार अंक यानी 0.25% की बढ़ोतरी कर इसे 5.25 से बढ़ाकर 5.50% कर दिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चली बैठक के बाद आज ये घोषणा की। RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान 5% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया है, जबकि GDP वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% किया है। रिजर्व बैंक के अनुसार रेपो दर बढ़ने से बैंक ऋण वृद्धि की गति कुछ कम हो सकती है लेकिन इसका समग्र आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई में फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले होने वाले संवाद में मध्य प्रदेश के क्षेत्र विशेष औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश अवसरों को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन टू वन बैठकें भी करेंगे। ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, नर्मदापुरम के रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, धार के पीएम मित्रा पार्क और उज्जैन के मेडिकल डिवाइसेस पार्क की संभावनाएं उद्योग प्रतिनिधियों के सामने रखी जाएंगी। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह और गीत संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से किशोर कुमार की जन्मस्थली पुलिस ग्राउंड में होने वाले समारोह में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता रघुवीर यादव को अभिनय के लिए प्रदान किया जाएगा। 12 अक्टूबर को ये शाम मस्तानी गीत संगीत संध्या में स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। वहीं 13 अक्टूबर को सम्मान समारोह के बाद गायक सुदेश भोसले गीत संगीत की प्रस्तुति देंगे। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर कांस्टेबल ड्राइवर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। इसके तहत कुल 1000 पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में आंधी और बारिश का अलर्ट है। कल भी पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल और अनूपपुर में बारिश की संभावना है। प्रदेश से मानसून 3 अक्टूबर को विदा हो चुका है। इस बार मानसून के दौरान प्रदेश में सामान्य से करीब 4% कम बारिश दर्ज हुई। आपको समाचार संक्षेप में। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बड़कुआ रोड पर आयोजित 3 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। शिवपुरी जिले में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु तहसील स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन आज 8 अक्टूबर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल नर्मदापुरम स्थित एसएनजी स्कूल खेल मैदान में जिला स्तरीय सेवा ज्योति संकल्प यात्रा निकाली गई। वहीं जबलपुर में भी भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत कल 8 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली गई। मंडला में वन्यजीव संरक्षण सप्ताह 2026 का समापन हुआ। कान्हा टाइगर रिजर्व कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए पोस्टर, पेंटिंग, रंगोली और क्विज प्रतियोगिताएं कराई गई। सतना जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों चित्रकूट, रायगांव, सतना, नागौद और रामपुर बघेलान के सभी 1552 मतदान केंद्रों पर युवाओं के नाम जोड़ने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विकसित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोदान फिल्म से महेंद्र कपूर, गीता दत्त और साथियों की आवाजों में अनजान के बोल रविशंकर का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से

0: पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँ
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उषा मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं रानी रूपमती फिल्म से गाना, भरत व्यास के बोल एस एन त्रिपाठी का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमें रही प्यार के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दूर का राही इस फिल्म के गाने के साथ, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: कार्यक्रम का अगला गाना प्रिंस फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फारूक कैसर के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमें रही प्यार के। अगला गाना सुनते हैं तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं एक फूल दो माली इस फिल्म से गाना। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में प्रेम धवन के बोल और संगीत है रवि का।

0: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी उत्तराखंड पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज यानी सीमाओं से परे विस्तार इसमें दूरसंचार डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा क्वांटम कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी स्टेडियम एक्सपीरियंस औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू आकाशवाणी समाचार दिल्ली
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चन को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं एक रिपोर्ट
2: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है यह कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्यवाही से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूरोपीय संघ फ्रांस जर्मनी इटली जापान दक्षिण कोरिया मैक्सिको पोलैंड तुर्की और ब्रिटेन शामिल है समाचार कक्ष से मैं पूजा
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन
4: दाग खाज खुजली में आराम हानि रहे बेदाग जालिम लोशन
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मोडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशन और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबजान में कोटेडी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई ये बैठक डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटेडी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
5: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, ऐसी है नहीं। हम पढ़ा बड़ा मजा आता है, सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ बीच में हम रहते।
1: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम हैं, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
6: न भाई न बहन न बीवी न बेटा, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जाब जोल
1: फिर आई 1994 में क्रांति वीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसे फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
7: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
1: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
7: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
1: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनुष शाह और दिया चिताले ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मानुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडप में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताले की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। 57th GST काउंसिल मीटिंग टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. IMD forecasts heavy rain in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. And in table tennis, Manu Shah and Dia Chitali create history, become first Indian mixed doubles pair to reach Grand Smash final, semi-final, I beg your pardon, at China Smash in Beijing. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhumi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 21 सितंबर। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रयागराज से बीनू प्रजापति और बुढ़ार मध्य प्रदेश से सविता सोनी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह भर नहीं है, इतिहास उन धड़कनों का नाम भी है जो समय के बीत जाने के बाद भी हमारे अंदर स्पंदित होती रहती हैं। कुछ नाम किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ नाम किताबों के साथ साथ देश की स्मृति में अंकित हो जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है अमर शहीद बाजी राउत का, जिसे याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं है बल्कि उस साहस को प्रणाम करना है जो उम्र का मोहताज नहीं था। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, आंखों में सपनों और कल्पनाओं की दुनिया होती है, उस उम्र में उन्होंने अपने हाथों में देश की आन थाम ली थी। इतिहास के पन्नों में धड़कती एक ऐसी घटना जिसकी नमी कभी सूखी नहीं। एक नाव थी, एक नदी थी, एक रात थी और उस रात से कहीं अधिक काला सत्ता का अंधकार था और सामने 12 साल के एक छोटे से बच्चे का अडिग साहस। एक ऐसा क्षण जो इतिहास को उजालों से भर गया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में अत्याचारी शासन के विरुद्ध लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। बाजी राउत भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर सन 1926 को ओडिशा के ढेंकनाल जिले के नीलकंठपुर नामक गांव में हुआ था जो ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है। बाजी राउत एक निर्धन मल्लाह परिवार से संबद्ध थे। उनके पिता का नाम हरि राउत और माताजी का नाम रानिया देवी था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार संकट में आ गया। इस कठिन परिस्थिति में उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया। वो आसपास के घरों में धान कूटने और मजदूरी का काम किया करती थी। बाजी राउत के दो बड़े भाई भी थे। अत्यंत कठिनाई से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। आर्थिक कठिनाई के कारण उनकी माँ बाजी राउत की शिक्षा का खर्च भी नहीं उठा पाती थी, लेकिन जीवन की पाठशाला बड़ी थी। बाजी राउत ने बचपन से ही अन्याय और गरीबी को देखा था। नदी की धार संग बहते उनके जीवन ने मेहनत के पसीने को देखा था और उनके भीतर साहस, स्वाभिमान और निर्भीकता के संस्कार पड़े।

माझी। ओडिशा की ढेंकनाल रियासत अपने दमनकारी और क्रूर शासन के लिए कुख्यात थी। प्रजा पर करों का बोझ था, बेगार और शासन की कठोरता ने एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। ये वो समय था जब देश में स्वाधीनता आंदोलन गति पकड़ रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन जारी थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही देसी रियासतों और राजे रजवाड़ों के अत्याचारों के विरुद्ध प्रजामंडल आंदोलन भी आरंभ हुआ। ढेंकनाल में भी जनता का आक्रोश बढ़ा और वहां प्रजामंडल का गठन हुआ। वैष्णव चरण पटनायक ढेंकनाल प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जो वीर वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने ढेंकनाल के कोने कोने में घूमकर युवाओं, किसानों और मजदूरों को संगठित किया। बालक बाजी राउत अपने गांव नीलकंठपुर में प्रजामंडल की बैठकों में शामिल होते, उनकी बातें सुनते। निर्दोष ग्रामीणों पर सिपाहियों के अत्याचारों ने उनके बाल हृदय को भीतर तक उद्वेलित कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही बाजी राउत ने स्वयं को प्रजामंडल आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया और अपना सामाजिक जीवन एक सजग बाल क्रांतिकारी के रूप में आरंभ किया। प्रजामंडल आंदोलन को निचले स्तर तक मजबूत करने और आंदोलनकारियों के बीच संवाद तंत्र को सुचारू बनाए रखने के लिए बच्चों और किशोरों की एक विशेष शाखा गठित की गई, जिसे वानर सेना कहा गया। बाजी राउत इसी वानर सेना में शामिल थे। वानर सेना के सदस्य ब्रिटिश पुलिस और राजा के सिपाहियों की गतिविधि पर नजर रखते, आंदोलनकारियों तक गुप्त सूचनाएं और संदेश पहुंचाते, गांव में ढोल बजाकर सभा के आयोजन की सूचना लोगों को देते थे। इसके साथ ही नदी, घाटों, जंगलों और गुप्त रास्तों की पहरेदारी भी वो किया करते थे, ताकि पुलिस या राजा के सिपाही अचानक हमला न कर सकें। बाजी राउत दिन रात इन कामों में सक्रिय रहा करते थे। चूंकि वो एक मल्लाह के पुत्र थे, इसलिए अंधेरे में नदी पार कर गुप्त संदेशों के आदान प्रदान में विशेष भूमिका निभाते। इस तरह वो और उनके बाल साथी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर आंदोलनकारियों को पुलिस की दबिश से बचाते थे। 1938 का साल आते आते ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अत्यंत तीव्र हो गया था। चारों ओर से विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। जनता अब और अत्याचार सहने को तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों ने जनता और शासन के बीच तनाव को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य केंद्र था भुवन गांव। ब्रिटिश और रियासत की सेना आंदोलन से अत्यंत परेशान हो उठे और दमन चक्र तेज हो गया। उद्देश्य था किसी भी तरह प्रजामंडल आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना, लेकिन आंदोलनकारी तो जैसे स्वयं सैनिक बनकर निकल पड़े थे।

ढेकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। राजा और ब्रिटिश हुकूमत आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए आक्रामक हो चुके थे। 10 अक्टूबर सन 1938 को ढेकनाल राजा के सिपाही और ब्रिटिश पुलिस का संयुक्त दल भुवन गांव पहुंचा। पुलिस नेताओं को पकड़ना और ग्रामीणों पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका प्रतिरोध किया। इस तरह ये संघर्ष बढ़ने लगा। पुलिस ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोली चला दी। इसके बावजूद ग्रामीणों का उग्र विरोध जारी रहा। स्थिति बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश पुलिस और सशस्त्र बलों ने गांव से लौटने की सोची। वो सुरक्षित ढेकनाल शहर पहुंचना चाहते थे और वहां पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता नीलकंठ

पुर घाट से होकर ब्राह्मणी नदी को पार करना था। 11 अक्टूबर सन 1938 को पुलिस बल नीलकंठ घाट पर पहुंचा। आधी रात बीत चुकी थी। नदी तट पर केवल एक नाव बंधी थी। उस रात पहरेदारी का जिम्मा 12 साल के बाजी राउत पर था। प्रजामंडल के शीर्ष नेताओं ने बाजी राउत को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पुलिस या राजा के सिपाहियों को नदी पार करने के लिए कोई नाव न दी जाए, क्योंकि वो ढेंकनाल से और सैन्य बल लाकर भुवन गांव और नीलकंठपुर में धावा बोल सकते थे। आधी रात को बाजी राउत के पास हथियारबंद पुलिस पहुंची। आदेश आया, नाव खोलो और नदी पार कराओ। सामने बंदूकें थीं और पीछे संगठन का आदेश और गांव की सुरक्षा का प्रश्न। बाजी राउत ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी आपे से बाहर हो गया। बाजी राउत को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। उन पर बंदूक तान दी गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नाव की रस्सी को जोर से पकड़ रखा था। बाजी राउत को धक्का देकर जब पुलिस नाव में बैठने की कोशिश करने लगी, तब उन्होंने शोर मचाकर गांव को सचेत करना शुरू किया। बौखलाए अधिकारी ने राइफल के भारी बट से बाजी राउत के सिर पर प्रहार किया। उनके सिर से खून बहने लगा। बावजूद इसके उन्होंने नाव की रस्सी छोड़ी नहीं और गांव वालों को आवाज देते रहे। इस पर क्रोधित पुलिस अधिकारी ने उन्हें गोली मार दी। बाजी राउत वहीं ब्राह्मणी नदी के तट पर शहीद हो गए। शोर सुनकर गांव के लोग घाट की ओर दौड़े। पुलिस ने उन पर गोली चला दी। इस तरह बाजी राउत के कुछ अन्य साथी लक्ष्मण मलिक, फगू साहू आदि भी शहीद हो गए। बाजी राउत की शहादत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उनकी अंतिम यात्रा ने उड़ीसा में जनता को आक्रोश से भर दिया। ज्ञानपीठ सम्मान से अलंकृत उड़िया कवि सच्चिदानंद राउत राय ने बाजी राउत शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी और इस बाल शहीद की स्मृति को साहित्य में अमर कर दिया। उनका भावपूर्ण स्वर यही था कि ये चिता नहीं साथियों, अंधेरे देश में स्वतंत्रता की वो ज्योति है जिसकी लौ कभी बुझती नहीं, जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि बाजी राउत का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, बाजी राउत का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अगला गाना बैंग बैंग फिल्म से। एश किंग, शिल्पा राव और शेखर अफजियानी की आवाजों में अन्विता दत्त और कुमार के बोल संगीत है विशाल शेखर का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। राज फिल्म से गाना सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजों में सईद कादरी के बोल, राजू सिंह का संगीत।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाऊं
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

विविध भारती राष्ट्र सेवा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का अगला गाना उंगली फिल्म से गुलराज सिंह की आवाज में, गुलराज सिंह का म्यूजिक और लिरिक्स हैं मनोज यादव के।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे हैं द स्काई इज पिंक। इस फिल्म से गाना गुलजार के बोल, प्रीतम का संगीत।

अरिजीत सिंह के साथ आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा की आवाज फिल्म द स्काई इज पिंक से। कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं जवान फिल्म से अरिजीत सिंह के साथ शिल्पा राव की आवाज, कुमार के बोल, अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरली बाबाज फॉलोअर,

0: मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना सुनते हैं।

जय श्री वी शांताराम की पत्नी थी जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम हैं। राजा राम वानकुंद्रे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म थी।

सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपना गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।

0: हिसाब दो।
1: सन 1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में राशि ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र।

सन 1965 में आई फिल्म दो दिल इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर।

बात 1966 की है, फिल्म आई सगाई। ये एसडी नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी।

मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में राशि के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेंद्र वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राशि ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत SH बिहारी के थे और संगीतकार थे OP नैयर।

सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा यह तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

अब राजश्री की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कलाकार थे।

अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहागरात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे जी पी सिप्पी।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राष्ट्रीय की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई है।

0: आज हमने अभिनेत्री राशि के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे दमोह जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले से मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम भी बदल गया है। सुबह शाम जहां मौसम में ठंडी देखी जाती है, वहीं दोपहर में तेज धूप और गर्मी भी देखी जा रही है। सोयाबीन भावांतर योजना के तहत जिले में किसानों के निशुल्क पंजीयन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है। किसान 17 अक्टूबर तक निर्धारित 23 पंजीयन केंद्रों पर ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा रहे हैं। इस खरीफ सीजन में जिले में सोयाबीन का रकबा करीब 50,000 हेक्टेयर में है। इसमें 35,000 से अधिक किसानों ने सोयाबीन की बोनी की है। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए भी किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। पीडब्ल्यूडी ने बारिश में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी 18 सड़कों के लिए कुल 6,66,18,000 रुपए के टेंडर जारी किए हैं। पहले चरण में 10 सड़कों की 51.5 किलोमीटर लंबाई पर 3,85,72,000 खर्च होंगे। दूसरे चरण में 8 सड़कों की 52.5 किलोमीटर लंबाई पर 2,80,40,000 रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन जेपी सोनकर ने बताया है कि एसटीएमसी स्कीम पहली बार लागू की गई है। इसके तहत एजेंसी को 1 साल तक सड़क की देखरेख करनी होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पिछले दिनों दमोह स्टेशन से द्वारका सोमनाथ यात्रा ट्रेन निकली, जिसको संस्कृति और धर्म न्याय राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में दमोह जिले के 468 तीर्थयात्री सहित रक्षक और पर्यवेक्षक सवार हुए। हमारे संवाददाता से बातचीत में मंत्री श्री लोधी ने बताया,
2: प्रसन्नता का विषय है कि तीर्थ दर्शन की एक ट्रेन दमोह से होकर जा रही है, जिसमें 468 यात्री जा रहे हैं। संरक्षक पर्यवेक्षक
1: पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद दमोह से कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे फोर लेन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब स्टेट हाईवे 63 को 2 लाइन से 45 मीटर चौड़ा करके 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। ऐसा होने से दमोह कटनी के बीच यात्रा समय में करीब 1.5 घंटे तक की कमी आने का अनुमान है। जबलपुर मंडल के डीआरएम कमल कुमार तलरेजा ने सागर से दमोह रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां चल रहे करीब 25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बन रहा नया एफओबी पुराने ब्रिज से करीब 3 गुना अधिक यानी 12 मीटर चौड़ा होगा। इसमें यात्रियों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा भी रहेगी। जिले के तेंदुखेड़ा और जबेरा क्षेत्र की सदियों पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को अब संरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने दोनों तहसीलों के 5 प्राचीन स्थलों को राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दमोह में 2608 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिनमें से

170 कनेक्शन भी किए जा चुके हैं। पिछले दिनों सीएसआईआर की 85वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली स्थित एएनएससी परिसर के भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डाक टिकट का विमोचन किया। इस डाक टिकट की डिजाइन दमोह निवासी मयंक गाडिया के द्वारा तैयार की गई थी। दमोह पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सीन ऑफ क्राइम मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिली है। खास बात यह कि इस वैन के जरिए फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मौके से ही साचे का मनोवैज्ञानिक तरीके से संकलन संरक्षण और प्राथमिक परीक्षण कर सकेगी। दमोह जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे दमोह दिल्ली की चिट्ठी, यह आकाशवाणी।
1: पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहां से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी एक गांव है उत्तर प्रदेश में जहां पे उन्होंने साधना अर्ली एज में की, वो अपने फिल्म में दिखा हुआ। तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी को बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ। और प्रतीत होने से ज्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे, तो ये आई थिंक उद्देश्य था। इसलिए हनुमान अंश और श्री नीम करोली बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई।
2: तो नीम करोली बाबा को एक भक्तिभाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार न करते हो, और रहस्य के रूप में भी। तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियां आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
1: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज्यादा प्रयास किया है, क्योंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं
2: जी।
1: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है, वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं,
2: त्रिकालदर्शी जिसको बोलते हैं,
1: आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपकी लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो ऑन द कोर्स ऑफ टाइम 10 years और 20 years कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। लाइक मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है और वो

0: द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गंगा की लहरें फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था, संगीत चित्रगुप्त का था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शैलेंद्र की रचना आपने सुनी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: रवि की तर्ज राजेंद्र कृष्ण के बोल मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
2: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
2: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नव में।

फिल्म नीली आंखें का ये दुकान आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की आवाज़ में, गुलशन बावरा के बोल थे दत्ता राम की तर्ज थी।

फिल्म जानवर का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब आपको सुनवाते हैं वो कौन थी इस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज। और यही है श्रोताओं आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: अगर अचानक आपसे कोई पूछे कि आपको कोई कविता याद है, कोई गीत याद है, कोई लोरी याद है, तो आप क्या जवाब देंगे?
2: मुझे तो लोरी याद आ जाएगी। हाँ। क्योंकि जो बचपन में सुनी हुई होती है ना लोरिया, वो दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है कि झट से मुंह में वो लोरी ही आ जाएगी।
1: बिल्कुल। लेकिन आजकल जैसे विलुप्त हो रही है लोरिया।
2: हाँ।
1: अभी मैंने कई माओं को ऐसे सुना है कि क्या करें, बच्चा सोता नहीं है, हम क्या करें, कहानी हमें आती नहीं है, कहाँ से लाएं कहानी। तो उन्हें बताना पड़ता है कि आप कहानी खुद बुनिए। किताब जब मांगते हैं लोग, माएं मांगती हैं कि हमें कोई किताब दे दो, उसमें से पढ़ के सुना दे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कहानी खुद बुनिए, धीरे धीरे बच्चा भी सीखेगा। इसी तरह से लोरी आप गा के सुनाइए उनको, तो अपने आप गाने का, संगीत का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, बच्चे के मन पर, अंतर मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो विलुप्त हो रही है लोरियां, हमें लगता है कि वो पारंपरिक गीत, वो लोरियां वापस ले आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ गूगल में न ढूंढे, उसे बाकायदा गाए, गुनगुनाए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाए।
2: ये हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आजकल मम्मियों को टाइम ही नहीं होता है, तो कहाँ से लोरी गाएंगी। तो वो ऐसे करती हैं कि मोबाइल पकड़ा देती हैं बच्चों के सामने और उसमें कोई भी फिल्मी गीत या कोई भी गाना चला देती हैं, तो बच्चे उसी से आकर्षित हो जाते हैं। पर जो खुद गा के हम जो सुलाते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनत्व का भाव बच्चे के प्रति आ जाता है। और दूसरा, जो हम हमेशा क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, तो माँ और बच्चे के बीच का जो नाता है वो और भी गहरा होता है।
1: और जब बड़े होते हैं बच्चे, तो जो माँ की थपकी है, माँ के आंचल पर लेट कर लोरी सुनने का आनंद, वो याद रहता है। चित्र, मोबाइल और ये सब
2: भूल जाते हैं,
1: नहीं याद रहता है
2: जी।
1: और ऐसे ही हम सबका एक नजरिया होता है कोई चीज देखने का, और आंखें कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है
2: जी।
1: तो अगर किसी के पास आंखें नहीं है, तो सोचिए कि दुनिया कितनी फीकी है
2: जी
1: लोगों के पास। तो आज दरअसल हम बात करें विश्व दृष्टि दिवस की
2: जी।
1: तो किस तरह से अपनी आंखों की देखभाल करें, किस तरह से हिफाजत करें, और दूसरों को अपनी आंखों से रोशनी कैसे दे सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करें।
2: नेत्रदान जी। और साथ ही आज वायुसेना दिवस भी है, उस बारे में भी हम जानकारी देंगे। और एक खास मुद्दा है ममता जी, मुझे कुछ कहना है, इसके अंतर्गत बेटे बेटी में भेदभाव जो आजकल थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, पर अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर घर में ही बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है कि बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है जबकि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। खाने पीने के मामले में भी बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है।
1: तो इसमें खास तौर से सखियां अपने अनुभव जरूर साझा करें कि उनके घर में क्या हुआ है, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वो किस तरह से ये मैनेज करती है, वो लिखें। और इसके अलावा
2: कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम छुटनी महतो के बारे में जानकारी देंगे।
1: और सोनाली जी, आज एक दुखद खबर मिली है, बहुत बड़ी दुखद
2: जी।
1: वो जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में कि वो इस दुनिया से, आज उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। और उनके संवाद में कितनी गहराई थी, अभिनय में उनकी ऐसी ताकत थी कि सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचती थी। और आपको याद होगा कि बहुत सारी उनकी फिल्मों के संवाद हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराते रहे हैं। और ये कहा जाता है बड़े दबंग व्यक्तित्व वाले रहे और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी उनकी रही। तो वो जो क्या कहा जाता है कि अपनी बातों में आग उगलते थे कई बार, और वो आग बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई के रूप में सामने आता था। तो आज वो नहीं है भले ही, लेकिन हम सब के दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे
2: जी। और उनके निभाए किरदार और उनकी बुलंद आवाज हमेशा दर्शकों के स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगी ममता जी। हम यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार, मित्रों और उनके करोड़ों प्रशंसकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे।
1: सुनते हैं नाना पाटेकर की फिल्म का ये गाना।

0: ये हमने नाना पाटेकर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये गाना सुनवाया इस प्रोग्राम में, और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि एक और प्रोग्राम हम प्रसारित करने वाले हैं शाम को 5:30 पर, नाना पाटेकर से बातचीत, जो हमारे विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित है, और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के किस्से हैं उसमें, उनकी फिल्मों के किस्से हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि नाना पाटेकर से कई बार मुलाकात का मौका मिला, और ये बातचीत जब हमने रिकॉर्ड की थी कई साल पहले, तो हम उनके निवास पर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, उनके स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान नजर आए थे, और इतनी सहजता से, इतनी विनम्रता से वो बातचीत की है कि मैं क्या कहूँ, इस वक्त बातें करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने है, और इसके अलावा कई बार मुलाकात हुई। तो आज 5:30 पर हमारे श्रोता वो प्रोग्राम सुन सकते हैं जो उन्हें उनके नाम पर हम प्रसारित कर रहे हैं
1: जी।
0: और
1: आज वायुसेना दिवस भी है। हाँ। तो वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना के स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में वायुसेना के वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है।
0: और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि वे देश की सुरक्षा संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं।
1: और ये दिन देशवासियों को उन वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर परेड, एयर शो, विमान प्रदर्शन और हवाई करतब आयोजित किए जाते हैं।
0: वायुसेना केवल साहस और रोमांच का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और देशभक्ति का संगम भी माना जाता है। वायु योद्धाओं का जीवन युवाओं को यह संदेश देता है कि ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत जरूरी है, और साथ में आत्मविश्वास और अनुशासन बहुत ही जरूरी है।
1: साथ ही ममता जी, आज एक और खास दिन है, विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है, और 2026 में यह दिवस 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को आंखों की देखभाल, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार के प्रति जागरूक करना है।
0: क्योंकि आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दुनिया को देखना, पढ़ना, लिखना, काम करना, सीखना, सब कुछ आंखों से ही तो होता है। लेकिन आंखों की जब अनदेखी करते हैं तो फिर आंखें आपको परेशान कर सकती हैं। बढ़ता स्क्रीन टाइम और डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां भी आंखों को प्रभावित करती हैं। पोषण की कमी और नियमित आंखों की जांच न करवाने से भी दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
1: और ये दिन हमें याद दिलाता है ममता जी कि दृष्टि की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से कई दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। कि जैसे समय समय पर आंखों की चेकअप करवाना चाहिए, साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम देना चाहिए
0: और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। ये जो बात आपने कही ना कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल, इससे तो कोई बच नहीं पाता है। और लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने लोग काम करते हैं, कुछ तो मजबूरियां भी होती हैं, लोगों की जॉब है ऐसी कि आपको लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। लेकिन उसका उपाय है, डॉक्टर्स उपाय बताते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए, पलकों पर हाथ रख के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, और या फिर पानी से थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को धोते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें, नुस्खे हैं जिससे आप आंखों को आराम दे सकते हैं। और धूप में जब जाएं तो जो काला चश्मा होता है वो लगाएं, उससे भी आंखों को सुरक्षा मिल जाती है। और आंखों में कोई समस्या हो तो बिना सलाह के दवा या आई ड्रॉप कतई ना लें।
1: नहीं तो ऐसा होता है ना कि घर में एक कॉमन रखा हुआ होता है सभी के फ्रिज में, और बस लोग लेते हैं, डाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सबकी आंखों के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स होते हैं, तो आप चिकित्सक से परामर्श लेके ही कोई दवाई आंख में डाले। और सबसे जरूरी बात है ममता जी, हरी सब्जियां, फल, दालें और पोषक आहार को अपने भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। और जिनको डायबिटीज वगैरह है, जैसे उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें नियमित आंखों की देखभाल ये जांच करवाने चाहिए। और ये कहते हैं ना कि आंखों की रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के रंगों को महसूस करने का जरिया है। तो अपनी सेहत के साथ अपनी आंखों को भी प्राथमिकता देना चाहिए और दूसरों को भी दृष्टि की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। और मरणोपरांत आप आई डोनेट कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहा जाता है ना किसी के दिल में उतरना है तो आंखों के जरिए। आप आंखें, आंखों से आंखों में बातें होती हैं। और तमाम गीतकार शायर ने आंखों पर शायरी की है, गीत लिखे हैं। एक गीत ये जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने और लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म चिराग। सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि ममता जी की नाना से सुनी मुलाकात हमें बहुत भाई थी।
1: क्या बात है, शुक्रिया। तो फिर जिन्होंने नहीं सुनी है ये बातचीत, आज शाम को 5:30 पर सुन सकते हैं। और अब देखिए ना, बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं जो हम शामिल करेंगे। और मेरे मोबाइल में मैं देख रही हूं कि बहुत सारे श्रोता नाना पाटेकर को लिख रहे हैं विनम्र नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। दरअसल वो ऐसे अभिनेता थे कि वो गए तो नहीं हैं, हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। जब जब उनकी फिल्में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जिंदा इंसान हमारे सामने हैं।
0: जी,
1: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समाज सुधारक की जिनका नाम छुटनी महतो है
0: जी।
1: और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को हम दे रहे हैं। छुटनी महतो झारखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जीवन अंधविश्वास और जो डायन, भूत, पिशाच जैसी कुरीतियां हैं ना, जिस तरह की बातें होती हैं, इनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और बाकायदा मोर्चा निकाला। इसको, इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मुहिम चलाई
0: जी। और ममता जी, कभी वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। छुटनी महतो ने बाद में अपने जीवन में उन महिलाओं की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता था।
1: और सोनाली जी, यहाँ एक बात और बताना है, जैसे कि बहुत सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी में है, कोई मानसिक बीमारी है, तो लोग टोना टोटका करवाते हैं, कहते हैं अगर इसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। और बहुत सारे आप मंदिरों मस्जिदों में भी जाकर देखते हैं कि जहाँ पर इस तरह के भूत पिशाच से दूर भगाने की मुहिम
0: उतारा जाता है जी।
1: तो दरअसल समस्या क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस अपना, कि अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण किया जाए
0: जी,
1: न कि भूत पिशाच के जरिए।
0: अंधविश्वास को दूर भगाना है। और छुटनी महतो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोलाडीह क्षेत्र से जुड़ी है। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 1995 में परिवार के एक बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक व्यक्ति ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ।
1: और 1995 की वो घटना जिसने जीवन बदल दिया। गाँव में अंधविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि छुटनी महतो को डायन कहकर सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा, तो और उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई इसी वजह से कि वो डायन है। बाद में उन्हें अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा आखिरकार।
0: ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनी। गांव से निकलने के बाद छुटनी महतो की मुलाकात एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जो इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कानून प्रशासन और जागरूकता के माध्यम से इस कुप्रथा का मुकाबला करना उन्हें सिखाया। 1990 के दशक के मध्य से ही उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी आशा नामक संस्था के साथ मिलकर काम किया। वे प्रभावित महिलाओं तक पहुंचती, उनके मामलों की जानकारी जुटाती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा प्रशासन की सहायता से उन्हें सुरक्षा दिलाने का प्रयास करती।
1: छुटनी महतो ने केवल पीड़ित महिलाओं की मदद ही नहीं की, बल्कि गाँव गाँव जाकर लोगों को समझाया कि बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या पारिवारिक परेशानियों को जादू टोने से जोड़ना गलत है। उन्होंने महिलाओं को ये भी संदेश दिया कि अंधविश्वास के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, ठीक नहीं होता। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला भी करना चाहिए।
0: और उनके अथक प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सैकड़ों से अधिक महिलाओं की मदद की है। और छुटनी महतो पुनर्वास केंद्र से भी जुड़ी रही, जहां ऐसी महिलाओं को सहायता मिलती है जिन्हें डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया था। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की एक टीम भी विभिन्न गांवों

0: उठाना जरूरी है और एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। छुटनी महतो की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। जिस कुप्रथा ने कभी उनके अपने जीवन को झकझोर दिया था, उसी के खिलाफ उन्होंने जीवन भर आवाज उठाने का फैसला किया
1: और उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे समाज की बेहतरी का माध्यम बनाया। और उनका जीवन हमें भी तो सिखाता है, अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी जागरूकता की लौ भी काफी होती है और छुटनी महतो उसी जागरूकता की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने मशाल बनकर सामने आई है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं
0: जी।

0: विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
2: ममता जी, एक सखी ने लिखा है कि आपका कार्यक्रम ऐसा है कि छूटता ही नहीं। अभी सोने की इच्छा थी, कमरे में जाकर लाइट भी बंद करी, फिर मोबाइल पर चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए उंगली बढ़ाई, ना ना अब तो रिटायर हुई ऑफिस की भी बंदिश ने, खुरपी कैची और गार्डनिंग का सामान लेकर बाग में आई, गाना चल रहा है तेरी आंखों की सिवा दुनिया में क्या रखा
0: है। क्या बात है, तो गार्डनिंग कीजिए, सोने के लिए रात है ना, दिन में सोने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा आराम जरूरी है
2: जी।
0: तो लेकिन वो आराम सखी सहेली के समय तो मुलतवी की कर सकती हैं
2: जी। एक हमारे साथी ने नेत्रदान के बारे में लिखी है, आंखों या चक्षुदान की बात निकली है, तब एक दुर्घटना याद आ गई। हमारी सोसाइटी के एक परिवार का इकलौता बेटा जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के वार्षिक उत्सव में मंच सजाने के कार्य के दौरान ऊंचे टेबल से गिर जाने की वजह से मौके पर ही उनका मृत्यु हो गई। और उनके माता पिता ने इस दुख की घड़ी में भी देर न करते हुए उनकी आंखों को दान करने का त्वरित निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनका बेटा किसी दो व्यक्ति में अपनी आंखों के द्वारा जीवित है।
0: क्या बात है, नेत्रदान महादान कहा जाता है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए और ये शुभ काम जरूर करना चाहिए। और सोनाली जी, आपको याद होगा कि एक जमाना ऐसा था जब घरों में दिन की शुरुआत और अंत भी गीतों से होता था। हमें तो याद है बचपन में कि सुबह उठते ही रेडियो शुरू हो जाता था और रेडियो से सुबह सुबह भजन आया करते थे। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी है और बहुत सारे घरों में ये होता है, सुबह के मंगल गीत, त्योहारों के गीत, विवाह गीत, रात को माँ की गोद में जो लोरी सुनाई देती थी, ये सब हमारे जीवन का सहज हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन कहीं कहीं अब जैसे गायब हो रही,
2: पीछे छूटती जा रही ना ये सब बातें। लोरी केवल बच्चों को सुलाने की धुन नहीं थी, बल्कि माँ के प्रेम, दादी नानी के अनुभव और परिवार की भावनाओं का संगीत था। और इसी तरह पारंपरिक गीत हमारे लोक संस्कृति के ऐसे धरोहर थे जिन्हें किताबों से नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर सीखा जाता।
0: बिल्कुल सही बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये सीखो, सीख कर हम पता चला कि मोबाइल में ढूंढ रहे हैं गाना और लोरी, फिर उस अपने बच्चे को सुना रहे हैं, बल्कि सुन सुन के याद भी हो जाती थी, वो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी,
2: उसकी धुन भी याद हो जाती थी।
0: अब तो बाकायदा टेक्स्ट ढूंढा जाता है गाने के, गीत के टेक्स्ट कहाँ मिल जाए, तो लिरिक्स, हम लिरिक्स मोबाइल से पढ़ते हैं और गाते हैं, हम मतलब आप जी मतलब हम सभी। आज जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें पारिवारिक संरचना ही ऐसी हो गई है कि इन गीतों की गूंज जैसे गायब हो रही है, पहले की तुलना में कम होती जा रही है। बहुत सारे लोकगीत हैं, लोरियां हैं ऐसी जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सुना भी नहीं होगा। और बच्चे के रोने पर माँ का उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे गुनगुनाना, जैसे कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे, फिर वो मतलब अपने जैसे उस बच्चे का नाम लेके कि अपने बच्चे का नाम
2: उसमें कि उसके नाम जोड़े जाते थे,
0: कहाँ किसी का नाम जोड़ दिया, तो ये होता था और ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती थी, सहज निकलता था मुंह से। और लोरी के शब्द भी बड़े सरल होते थे लेकिन उनमें भावनाओं की बड़ी गहराई होती थी। कभी माँ बच्चे के भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी उसे में, और कभी उसके लिए सुख समृद्धि की कामना भी करती थी, और कभी प्रकृति, चांद, सितारों और पक्षियों को अपनी लोरी का हिस्सा बना लेती थी। और बहुत सारी महिलाएं जिनमें गीत और कविता की प्रवृत्ति होती थी उन्हें पता

0: भी नहीं होता था कि उनके भीतर एक कवि
1: छिपी हुई प्रतिभा है जी। और दादी नानी की लोरियों में तो उनके अपने जीवन के अनुभव भी घुल जाते थे ममता जी, इसलिए लोरी बच्चे को नींद देने के साथ साथ परिवार की स्मृतियों को भी जीवित रखती थी। और फिर पारंपरिक गीत भी, हर अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते थे। विवाह गीत शादी के अवसर पर महिलाएं मिलकर गाती थी, बन्ना बन्नी के गाने गाते थे। और
0: आपको याद है क्या बन्ना बन्नी? तो कभी हम लोग तैयारी से आएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे,
1: बट ढोलक चाहिए उसमें साथ में।
0: तो ठीक है, ढोलक की व्यवस्था कर लेंगे और पारंपरिक गीत और इसी पर एक सखी सहेली हम करेंगे। अब देखते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं कि उनको ऐसा वाला प्रोग्राम चाहिए या नहीं,
1: पसंद आएगा या नहीं।
0: जी
1: और है ना ममता जी, इन गीतों में हंसी मजाक, भावनाएं, रिश्तों की मिठास और बेटी की विदाई का दर्द भी दिखाई देता था।
0: बारिश के मौसम में झूले पड़ते थे, महिलाएं मिलकर सावन के गीत गाती थी और कोई जो पटना बोलते पटोहा
1: जी,
0: तो उसको झूले को झुलाते थे। और इनमें प्रकृति प्रेम और मायके की यादों का सुंदर चित्रण भी मिलता था उन गीतों में
1: जी। और साथ ही घर में बच्चे के जन्म पर खुशी व्यक्त करने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे, ये परिवार की सामूहिक खुशी का प्रतीक होते थे। और त्योहारों के गीत पे होली, दीपावली, तीज, गणगौर, नवरात्रि और अन्य पर्वों पर भी अलग अलग क्षेत्रों की अपनी लोकगीत परंपराएं भी रही है।
0: स्कूलों में लोकगीत और लोरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, बच्चों को स्थानीय भाषा और लोकगीतों से परिचित कराया जाता था, याद है कि नहीं?
1: बिल्कुल याद है।
0: और विवाह और त्योहारों में रिकॉर्डेड संगीत के साथ पारंपरिक गीतों को भी स्थान दिया जाता था।
1: और तो अगर इन गीतों को भी अभी भी अगर स्थान मिले तो कितना अच्छा होगा ममता जी।
0: बिल्कुल अच्छा होगा, ये रहा। भाई हमारा तो ये कहना है कि ये जो गीत कम सुनने को मिलते हैं लोरी की शक्ल में, श्रोता इन्हें साथ में गुनगुना सकते हैं।

भाई देखिए सुना लीजिए, हमारे श्रोताओं को तो ये लोरी पूरी याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप भी याद कर लीजिए और हमें भी याद है। तो हमारे एक श्रोता ने पूरी लोरी लिख भेजी है, तो इनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। और जो लोग

0: विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, ये लोरी वहां से लेकर अपने बच्चे को आज सुना सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने पोते को, नाती को, जो भी घर में छोटा बच्चा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो सोते समय कोई न कोई लोरी, जैसे चंदा मामा दूर के लल्ला लल्ला लोरी, कोई गीत गाते हुए सुलाती थी। अगर मैं रुक गई तो कहते थे मम्मी गाओ ना, जब तक गहरी नींद न हो जाए मुझे गाना ही पड़ता था। पर अब वही बेटियों को लोरी गाने का टाइम नहीं है, बस एक ऑडियो लगाकर बगल में रख देती हैं और कामकाजी लड़कियों को नौकरी से टाइम बेटाइम घर आना पड़ता है, घर के कामकाज, बच्चे लोरी गाने का टाइम ही नहीं, बच्चों के लिए लोरी गाने का टाइम ही नहीं है। देश विदेश में रहने के कारण या दूसरे शहरों में रहने के कारण दादी नानी भी पास नहीं रहती हैं। भाई यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर महिलाओं की नौकरी तो वो आजीविका के कारण करती है, मजबूरी है और करना भी चाहिए, तो लेकिन पिता है घर में तो पिता को सुनाना चाहिए। दादा दादी है,
1: सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं,
0: बिल्कुल जो घर में है उसे सुनाना चाहिए। और मान लीजिए कि दादी दादी को, नानी को बहुत सारी लोरियां याद है, तो अब तो फोन का जमाना है, फोन पर वीडियो कॉल करके भी सुना सकते हैं।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि लोरियों से अपना बचपन और अपने बच्चों का बचपन याद आ गया, और साथ ही कहती थी कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले, आवा बबुआ के मुहुआ में घुटुक, ए चंदा मामा आ रे आओ, एक सखी ने लिख कर भेजी।
0: और जब घुटुक जिसपे दूध पिलाने के नाम पर माए बच्चे को करती है घुटुक, अपने बच्चे का नाम लेगा तो कई बच्चे मुंह पर हाथ लगा लेते हैं कि नहीं घुटुक नहीं,
1: दूध पिलाएंगे
0: घुटुक नहीं बोलो, बस बाकी लोरी सुनाओ, ये भी होता था।
1: एक साथी कहते कि हमारे यहाँ बेटा होने पर जो मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर गीत कहा जाता है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लोरियां विलुप्त हो गई हैं लेकिन पारंपरिक गीत तो अभी भी बरकरार हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो शादी ब्याह नामकरण कुआं पूजन वगैरह, उसमें आज भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिनके बिना आयोजनों में आनंद नहीं आता। ये पारंपरिक गीत अपनी लोकल भाषाओं में गाए जाते हैं जिनको सुनना एक अलग ही एहसास कराया जाता है। भाई अभी तो जब शादी ब्याह होते हैं तो बहुत सारे रस्म होते हैं कई दिन, और उसमें छोटे छोटे रस्म के मंदिर जाती हैं महिलाएं,
1: कुआं पूजन,
0: हाँ फिर वो मिट्टी की मिट्टी होती है तो मिट्टी पूजन करती हैं, वहाँ एक लोकगीत होता है, फिर वो एक मतलब सात महिलाएं एक बर्तन को पकड़ती हैं जिसे क्या बोलते हैं, सिकोहली बोलते हैं या फिर भौरी बोलते हैं, तो वो उठाती हैं तो उस समय एक गाना गाया जाता है, फिर वहां से निकलती हैं तब सड़क पर जब चलती हैं तब एक गाना, फिर दरवाजे पर आती हैं तो
1: तब गाना,
0: बहुत सारे गाने हैं। लेकिन हाँ, इन परंपराओं को, इन गीतों को आने वाली पीढ़ी को बताना उन्हें
1: हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल
1: जी। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी, लोरी एक शांत मधुर और सौम्य गीत होता है जिसे माँ या अभिभावक अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए गाते हैं, पर आज आधुनिक जीवन शैली, एकल परिवार और डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक लोरिया और लोकगीत विलुप्त होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन और टीवी पर सिर्फ लोरी मिलती है आत्मीयता और प्यार नहीं, नई पीढ़ी का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति से दूर होना भी तो इन मौखिक परंपराओं के लुप्त होने का एक मुख्य कारण है।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि दुनिया बदली सो बदली, मगर ताज्जुब ये कि अब शायद ही कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाती हो। माँ और बच्चे के रिश्ते में पालना और लोरी का अटूट संबंध रहा है। लोरी की दुनिया दरअसल सपनों की दुनिया है। माँ की लोरी में ऐसे हसीन और सुहाने वादे होते हैं कि माँ के चेहरे पर आते भाव से रीझ कर हर बच्चे के चेहरे पर पहले मुस्कान और फिर आंखों में नींद आ जाती है, और नींद में सपने होते हैं, तब शायद सपनों में माँ भी होती है। हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसी लोरियां हैं जिनको सुनकर कानों में आज भी मिठास घुल जाती है।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि लोरी बच्चे के लिए भाषा का पहला परिचय है और पहला संगीत हुआ करती थी। माँ की थपकियों की लय और उसकी धीमी आवाज में बहता वात्सल्य बच्चे को न केवल गहरी नींद में ले जाता था बल्कि उसे मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव भी कराता था। लोरी माँ और शिशु के बीच एक अनूठा संवाद थी जिसमें लोक कहानियां, प्रकृति और पारिवारिक रिश्ते ताने बाने की तरह बुने होते थे।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आपके विचार से लगता है कि ये तो मेरी ही बात है। समय मिलने पर ही मैं अपने शिशु से बातें करती थी। सुलाते समय लोरियां तो जरूर, स्वरचित लोरियां भी बेटा सुनता है। रूप कथा कहानी सुनकर वो बड़ा हुआ है, मेरी स्वरचित कहानी भी सुना है, इससे बच्चों में कल्पनाशीलता तो बढ़ती ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप एक इसका एक तरीका और है कि आप कहानी सुनाने लगती हैं, तो दो चार लाइन सुनाइए और फिर पूछिए बच्चे से फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो फिर, वे उन, हाँ, इसमें तो, शामिल होंगे उसमें।
0: बिल्कुल, वो लाइन जोड़ेंगे कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और वो जब दहाड़ता था तो बहुत सारे वहाँ जानवर डर के मारे दुबक जाते, फिर क्या हुआ, तो बच्चे वहां पर बताएंगे आपको, इससे उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार होता है।
1: एक साथी ने कहा, चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोरी गीतों में से एक है। ये गाना बच्चों को सुला रहे और उनका मन बहलाने के लिए पीढ़ियों से गाया जाता है। 50 साल पहले जिनका बचपन बीता होगा शायद ही कोई बच्चा इस लोरी के बिना सोया होगा, या माँ अपनी माँ दादी माँ बुआ नानी मौसी की गोद में खेलते हुए इस लोरी को नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं होगा।
0: तो चलिए फिर ये लोरी एक बार फिर से सुनते हैं।

0: ये वाली लोरी कितने श्रोताओं को याद है जरा बताइए, अगर याद है तो पूरा लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, क्योंकि ये तो सुरक्षित रहता है, जब भी श्रोता चाहेंगे आपके इस कमेंट को पढ़ सकते हैं। और देखिए ना सोनाली जी, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं इसके लोरी के लिए
1: जी।
0: कि एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे जहाँ बेटा होने पर मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर कहा जाता है, बेटा नहीं बल्कि बेटा बेटी क्योंकि बेटी के पैदा होने पर भी अब सोहर गाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ढोलक वाला प्रोग्राम तो अवश्य पसंद आएगा। देखिए आ गई टिप्पणी, तो आप तैयार हैं?
1: हाँ बिल्कुल तैयार हूँ।
0: हाँ तो अगली बार ढोलक लेके
1: बैठेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुहा में घुटुक। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जब हम ये गाया करते थे और सुना करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटा हो या बेटी हो सोहर खिलौना सभी के जन्मोत्सव छठी बरही में गाया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी बहुत माँ को देखा है बच्चों को लोरियां सुनाती हैं और आजकल तो अलेक्सा भी आ गई है, तो मेरा पोता छोटा था तो अलेक्सा पर हम लोग लोरी लगा देते थे और सुनता था। एक श्रोता ने लिखा है कि गुजराती लोरी है जो हमारे भाभी जी गाकर अपने बेटे को सुनाती थी, भाईलो मारो डायो पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी भाईलो मारो गयो हसी। ये लोरी सुनाती
1: यानी कितनी मिठास है ना, जो भी भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें एक अलग ही मिठास होती है, फिर वो हमें भले ही समझ ना आए पर उसकी मिठास हमारे दिल तक पहुंच जाती है।
0: सोनाली जी अब देखिए आपको ढोलक की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है ढोलक संगत के साथ सभी सखियों सहेलियों के गाने के प्रोग्राम कीजिए ना, सृजन भारती में भी ऐसा प्रोग्राम हो
1: वाह
0: आनंद आ जाएगा। तो चलिए अब तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो टिप्पणियां आ रही हैं
1: जी
0: उसे पढ़ दिया।
1: अब जैसे कहा एक श्रोता ने कहा कि हमारे बेटे के जन्म होने पर वो जो खास
0: सोहर
1: गाया जाता है, तो वे बेटी के जन्म पर भी गाना चाहिए, बेटे बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि मेरे तो तीन बेटियां ही है, किसी भी भेदभाव की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से बेटियों को पालने की कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे भोजन, एजुकेशन, साफ सफाई, अच्छा पहनना ओढ़ा, सभी बहुत बेहतर करने की कोशिश की, एजुकेशन पर बहुत जोर दिया, जिसके कारण आज बड़ी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और एक कथक डांस स्कूल भी चला रही है और दूसरी बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है, दूसरे के बेटों से बेहतर है, वो भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, क्या बात है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि ये पुरानी मान्यता गलत साबित हो चुकी है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है, असलियत में बेटियां विवाह के बाद भी माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमलों के कारण काफी सुधार आया है, लोग बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं।
1: एक हमारे साथी ने कहा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग क्यों हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती है, चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार, फिर खुद से पूछती हूँ कि जब प्यार दोनों से बराबर तो सोच में फर्क क्यों, शायद ये भेदभाव जानबूझकर नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही सोच का असर है, अब कोशिश है कि दोनों को सिर्फ बराबर प्यार नहीं बराबर भरोसा भी दे सकूं, अब बेटियां इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वह एरोप्लेन उड़ाने के साथ साथ देश के लिए बंदूक लेकर भी खड़ी है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि हमने यानी कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर कॉलेज स्कूल में शिक्षा दिलाई है, सबको उनकी रुचि के अनुसार हायर एजुकेशन कराया और बेटे अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और बेटियां भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए बेटियों को पहले आत्मनिर्भर होने का पूरा मौका दिया है।
1: क्या बात है। एक सखी ने लिखा है मेरे ससुराल में बेटियां बहुत कम है, मेरी बेटियों के होने पर बहुत खुशियां मनाई गई, मेरे सास ससुर नंद बहुत खुश हुए थे, कभी हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि इनके तो बेटियां ही है। कितनी अच्छी उदाहरण है।
0: बिल्कुल। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती हैं, चिंता का कारण न्यूज पेपर में आते समाचार हैं, फिर खुद से पूछती हूँ जब प्यार दोनों से बराबर है तो सोच में फर्क क्यों।
1: एक साथी ने लिखा है कि बेटे बेटे में भेदभाव ये क्यों होगा, जब लड़का लड़की सब बराबर है तो आजकल सभी क्षेत्र में दोनों बराबरी से अपनी भागीदारी देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या ढूंढ लेते हैं बेटे और बेटी में जो हमें भेदभाव सिखाए। मैं तो बेटा और बेटी दोनों की माँ हूँ, इसलिए मेरे लिए सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं किसी भी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं होता। जितनी बेटी लाडली है उतना बेटा भी है, दोनों को एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि अगर बेटी बेटे में भेदभाव की बात करें तो आज के युग में भेदभाव रखने का प्रमाण कम होता जा रहा है, क्योंकि आज की बेटियां बेटों के समकक्ष हो गई हैं, जो नौकरी करते हुए पूरा घर पूरा परिवार संभाल रही हैं, इसलिए उसे नारायणी भी कहते हैं। कोई अतिशयोक्ति न होगी, ये भेदभाव पुराने जमाने में जरूर था और माना जाता था कि केवल बेटा ही वंश आगे बढ़ा सकता है, जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। असल में पुराने जमाने में भी बेटियों को बाकायदा सक्षम बनाया जाता था। बहुत सारी महिलाएं वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया गया है, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन भूल सकता है। तो ये समय है, हाँ ये जरूर है कि अब जो समय है इसमें बेटियों को भी बराबरी का मौका मिल रहा है। तो जो लोग जो जिन घरों में अभी भी भेदभाव है, मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम से चर्चा से वो भेदभाव करना छोड़ देंगे।
1: और अब गीत सुन ले,
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई हमारे भी अब जाने का वक्त हो रहा है, कुछ कहना है?
1: एक सखी ने लिखा है कि लोरी और पारंपरिक गीत के विषय ने सखी सहेली में चार चांद लगा दिए।
0: क्या बात है, आपकी टिप्पणियों ने चार चांद लगा दिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाए, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत जब आपकी पसंद का हो तो गीत और भी खास हो जाता है ना? तो आइए आज के इस फरमाइशी सफर में शामिल होते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यारी बातें और साथ ही हमारे एहसास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: बात कर रहे हैं, वो साहिब नांदेड़ से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रहीम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। देखिए, और हेलो फरमाइश के जरिए और भी अच्छे हो जाते हैं आप सभी श्रोताओं से बात करके।
1: हाँ जी हाँ, तब आपका हमारा मनोरंजन तो इतना बढ़िया, इतना भारी आता है विविध भारती, इतना अच्छा मजा आता है जब।

0: ऐसा है तो ऐसा लगता नहीं कि हम कई और है, ऐसा है कि हम हमेशा रात के 11 बजे तक विविध भारती के प्रोग्राम सुनने में बड़ा मजा आता है।
1: अच्छा, तो क्या करते हैं साथ में आप विविध भारती का प्रोग्राम तो सुनते हैं?
0: मिस्त्री के साथ में बांधा वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं।
1: बहुत बड़ा काम करते हैं आप, है ना? सर्दी गर्मी धूप बरसात कोई भी मौसम हो और घरों में बनाने के लिए आप तैयार रहते हैं।
0: जी हाँ, सही। देखिए, हम तो अच्छा रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, जैसा सर्वधर्म संभव बन के चलते हैं। और हम सभी से कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा में स्वर्ग है, जन्नत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को थोड़े थोड़े बातों पे दुख दे रहे हैं, कभी उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरा रूप भगवान का माता पिता होते हैं, और माता पिताओं के साथ में रहना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा भविष्य।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी और निश्चित रूप से आपने भी अपने माता पिता का ख्याल रखा होगा। जी बताइए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: उनका नाम है मिस्टर नटवर लाल, परदेश से आए ये सबके किया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पीलो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पीलो प्यार का जाम। मैं तेरी खुशबू हूँ, आज शबनम अब्बासी है मेरा नाम। दीदी
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही हैं, आरजे हैं आप?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग एक साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए दीदी। जी दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्या करें दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
0: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले है ना, काम ही तो पूजा है। आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी होगी।
1: दीदी आपकी आवाज जब गूंजती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
0: आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे घंटों बात करती रहूं।
1: थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे पार्लर में रेडियो बजता रहता है, हम सुनते रहते हैं, कस्टमर भी सुनते हैं।
0: क्या बात है, तो एक बात बताइए, कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं आप?
1: जब हम प्यार से उनसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे। हम उनका मतलब जैसे पहले आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो हमें हमारे पास वो जरूर आते हैं दीदी।
0: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना?
1: ये देखो बड़ा हो ये छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक, उसका टाइटल सॉन्ग है, यही सुनवा देना दीदी।
0: आइए सुनते हैं ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: हेलो फरमाइश कर रही हूँ।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हम राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
0: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
1: जो लाइसेंस बनते हैं, हाँ, गाड़ियों के वाहन के, चाहे चार पहिया हो या दो पहिया हो या जितने बड़े वाहन हो, सभी के जो बनते हैं
0: वो काम करते हैं?
1: नहीं, इसमें ड्यूटी चल रही है।
0: अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी ड्यूटी के?
1: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा। अभी तो हम अकेले ही हैं, बाकी 24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
0: बहुत कठिन काम है ये, तो फिर परिवार के साथ समय बिता पाते हैं?
1: नहीं मैम जी, हम अकेले ही हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
0: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
0: और अपने स्वास्थ्य और अपने दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
1: बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ना ज्यादा धूप है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है, मीडियम सॉफ्ट है। जब मौसम बदलेगा तो हानिकारक तो होगा ही मैम जी। नींद भी पर्याप्त समय पे लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे नींद तो जरूरी है मैम जी।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। तो बताइए
1: हाँ जी,
0: गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मूवी का नाम है सौदागर, गाने के बोल है, तेरी याद आती है मैम जी, तो लाइने हैं, बोल दे इजाजत हो आपकी।
0: सुनाइए।
1: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है, जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है।
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आपका जिंदा श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मुंडा जी,
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी दोनकले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गाँव?
1: हो ग्राम विभाग का खेड़ गाँव है।
0: क्या नाम है?
1: खंडा गाँव।
0: अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी तो नया तालुका है, नया गाँव, उसमें खंडगांव गाँव है।
0: अच्छा, तो बताइए अपने गांव के बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: सब आदमी, सभी गांव, सभी किसी के सुख दुख है। कौन सा ही कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ अनेक अनेक जो अलग कार्यक्रम है कुछ है, तो सभी आदमी मिलके करते हैं। कोई वाद नहीं, डंटे नहीं, कोई नहीं। सभी आदमी इलेक्शन में हो या कौन सा ही कारण हो, एक भीड़ में न हो, क्योंकि सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। बहुत अच्छे आदमी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी ये मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: वो मंडा जी,
0: जी
1: आपने जो आज के फंड करे ना कार्यक्रम, क्या बढ़िया कार्यक्रम है। और मंचे है जी,
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: ओ, और सेहत नामा का डॉक्टर है ना, उसकी जानकारी मिलती है हर दवा के बारे में। हमारे ग्रामीण भाग में, हर टाँडा वस्ती वाड़ा में डॉक्टर का विचार क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण में सभी पहुँचते है ना।
0: बहुत अच्छी बात कही। सेहतनामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है, और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारे ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
1: और इसके लिए जो महिला का तो तुम्हारा सखी सहेली ना, हमारी महिला, हमारी पत्नी सभी मिलके वो कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो सखी,
0: सखी सहेली भी सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना?
1: तो
0: बहुत अच्छी,
1: पूरा जानकारी मिलती है ना हर आदमी की। हर कहाँ से फोन लगा, कुछ मैडम ने हमारे जो बहन रहते बहन, उन्हें कहाँ से बात कर रहे क्या नहीं, सब मिलता है ना हमारे लेडीज को।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना?
1: वो भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोले तो विविध भारती देश में कहाँ भी जाओ।
0: चलिए, आपकी खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं विविध भारती को सुन के। अब बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें?
1: गोरा और काला धीरे धीरे बोल कोई।
0: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी दीदी, हम ग्राम कीड़ा कंजर डेरे से बात कर रहा हूँ। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाड़ा।
0: कैसे हैं आप? संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए?
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन की कटाई हो गई है, हम अब गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करेंगे।
0: अच्छा, गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है, जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
1: दीदी इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोडा रोटर एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरिया बना के फालियां, और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूं चना तो डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
0: मौसम खेती बाड़ी के लायक है?
1: हाँ, खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो गया है दीदी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और होल अभी से ही कमजोर चल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर वाला यदि पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा, जो हमारा देवास जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
0: अच्छा।

0: हेलो, फरमाइश कर रही हूँ।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जम्मू कश्मीर सोना मार्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी, स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए।
1: यहाँ आज तो मौसम लगे बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी रहती है, स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतना गर्मी।
0: दिन की गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: और होता है तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है ना सितंबर का महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं दिन भर?
1: नहीं, बाकी बाकी काम कर लेता है ना, जैसे अखरोट का अभी एक गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट में पैकिंग करते हैं, ऐसा
0: हाँ,
1: ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं अखरोट
1: हाँ,
0: की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना अखरोट, उठाते हैं उसमें तो दो फाट गिरी निकालते हैं, वो निकालते हैं तो फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं
0: अरे
1: पत्थर पे। हाँ,
0: अच्छा, कितने अखरोट
1: पत्थर
0: को
1: पे
0: तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग 1 क्विंटल किसी को निकलता है, 1 क्विंटल किसी

0: को निकल जाता है 40-50 किलो, ऐसा ऐसा रहता है।
1: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं हल्का हल्का, एक नट क्रैकर आता है उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना, आप कह रहे हो हाथ से करते हैं।
0: हाँ हाथ ही, वो तो हल्का हो उसको उतना ये नहीं होता है, छिलका पत्थर पे रखते हैं फिर तो हथेड़ी से दम मारते वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते हैं।
1: तो गिरी चूरा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना।
0: बहुत ध्यान रखना पड़ता है,
1: बहुत मुश्किल काम है ये भाई।
0: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
1: चलिए बहुत
0: हाँ जी,
1: महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
0: हाँ, बहुत मुश्किल मेहनत तो अब यही है, रोजगार
1: बिल्कुल
0: मेहनत
1: एमपी,
0: करनी पड़ती।
1: आपने समय निकालकर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
0: हाँ हाँ सही बात सही बात, मैं दिल से सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, सेहतनामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ, सारे
1: बताइए।
0: प्रोग्राम सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम आते हैं वो मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार भी सुनता हूँ।
1: अरे वाह बहुत खूब, गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद का।
0: फिल्म का नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, इन जहां की तुम्हारी आंखें।
1: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, हम मिलके सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: जिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जिंदर बोल रहा हूँ मैं।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: भाई टू व्हीलर गाड़ी जो है सीट कवर के काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में मोटर बाइक के।
1: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं
1: जी हाँ।
0: अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका या किस तरह?
1: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं जो पानी वानी नहीं जाते हैं। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
1: ये सीट कवर जो नॉर्मल आते हैं ब्लैक कलर के आते हैं जो।
0: अच्छा, पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, या ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे, जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपने स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
1: अभी क्या एक नेट वाला कवर आ रहा है जाली वाला, वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात
0: हाँ,
1: के दिनों में
0: हाँ,
1: तो जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है, गर्म नहीं होती।
0: ये पते की बात कही है आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के, तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
1: ये मेरी दुकान है ना, गराज के ऊपर है, गराज जितने आए जितने टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, ऑटो के हुड वुड में सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
0: तो फोर व्हीलर के जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते
1: हैं
0: या?
1: सीटें बढ़िया होती है, गाड़ी खड़ी रखने की भी जगह होनी चाहिए, हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ खड़ी रह जाती है आराम से, उसके लिए जगह की भी स्पेस चाहिए ज्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए, आप तो उदयपुर में रहते हैं झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: उदयपुर में फिल्माया गया गाना है राजपूत का।
0: कौन सा?
1: मेरे संग संग आया यादों का मेला।
0: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्माया था?
1: उदयपुर राजस्थान किशोर कुमार।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कह रही हूँ।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छा है। मैं कम से कम एक महीने से प्रयास कर रहा था मैडम, तो इसके बाद इतना ब्रस्ट तो आज लगा है, तो बड़ा मुश्किल से लगा था बेचारा, अच्छा हुआ लग गया मैडम। और सबको पहले आपको दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाले छठ पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अरे इतने सारे शुभकामनाएं एक साथ दे दी, कहाँ रखेंगे हम?
1: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा, बांटते रखेंगे।
0: जी जी जी बिल्कुल, आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट फील्ड में नौकरी करता हूं मैडम, और नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूं, लाइव फोनिंग करके मैं जुड़ता हूं, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूं, ईमेल में जुड़ता हूं, बड़ा मोबाइल में बात करता हूं, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूं, सभी केंद्र का सुनते रहता हूं। बहुत केंद्र का मेरा प्रसारण आया मैडम, और आपके केंद्र में लगा बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है शरम तेरी कसम, और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक हैं।
0: तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कह रही हूँ।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: साहिल नगर से बात कर रहा हूँ, मच्छिंद्र हरदास चांडवले। मैं तू जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का, तो पहले पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माता जी, उसके बाद पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बाद जो अपने को आध्यात्म वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते हैं, जो आपने आंख से जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मांगता जिंदगी में, तो वो सही रहती वो माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती। तो आप उन सबका कर्ज अदा कर सकते, माँ का दूध का कर्ज जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो।
1: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ले, हमने हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं बोले।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
1: अभी मेरा विद भारती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे हैं 50 साल से, स्कूल में चौथी में से था जब तक, तो आज तक लेके हम विविध भारती बचपन से सुन के बड़े होते आएले। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते हैं, एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी में तू जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश संस्कार धानी से प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह ही बोल रहा हूँ मैम। सबसे पहले तो दीदी मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
0: चलिए, अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या आपने वो स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से शाम 4 बजे तक?
1: शानदार, बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा, दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा। हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। जो प्रस्तुति थी और जिन कलाकारों को बुलाया गया दीदी, बहुत ही काबिले तारीफ। विविध भारती में राष्ट्रीय सेवा परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी ऐसी ही चीजें आती रहे बहुत ही अच्छा लगता है।
0: आपने उसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये शिरकत की थी?
1: सभी सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी में किया हुआ हूँ। दीदी मैं नियमित श्रोता फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट रहेगा ही रहेगा दीदी।
0: हाँ, बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक से हम लोग जुड़े रहते हैं और तब करते हैं, तो आपकी जो टिप्पणियाँ हैं, संदेश हैं, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी खास प्रोग्राम के लिए जब वो लाइव हो।
1: जी दीदी, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे।
0: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आनंद बख्शी जी के बोल है और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं,
0: आइए सुने आपके पसंद का ये गीत।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867028, 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4 plus 1 is equal to 100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4 + 1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु है डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर. आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन. छाया गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में.

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है तब।
1: भूल गया सब कुछ।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिस

0: में पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

0: मुस्काना।
1: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे, फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहां एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून है इस प्रेम में।

दोस्तों, हमने एक ऐसा कलाकार खो दिया है जिन्होंने अभिनय की दुनिया में अपनी एक विशेष शैली गढ़ी थी। उनके बोले संवाद को दर्शक अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, वजूद, वनवास जैसी फिल्मों में उन्होंने सशक्त भूमिका निभाई। नाना पाटेकर का जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, ये उस आवाज का मौन हो जाना है जिनके संवाद सुनकर दर्शक ठहर जाते थे।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार मां महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
1: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम के सितंबर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित यह संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
1: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी,
1: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
1: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
1: जी।
2: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
1: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
1: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: जी, तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
2: जी।
1: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
1: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
2: जी, तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट, विक्रम राम जी खानुलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
1: जी हां श्रोताओं, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
2: जी,
1: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
2: जी,
1: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
2: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
1: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
2: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
1: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
2: और इसे प्रदान कौन करता है?
1: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
2: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन।
1: जय हिंद। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो आप सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
3: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
4: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
3: भालू ने कहा,
5: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
3: किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
5: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
3: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
5: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
3: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन
1: चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है हां चल घर चल
2: नहीं
1: अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे अरे चल ना जल्दी कर
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

के लिए उजड़ गई बेटी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: दीदी कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
1: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
0: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
2: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
0: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
1: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
2: हाँ।
1: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
2: और क्या
1: है, आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
2: हाँ?
0: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से?
1: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तब में उसके प्राण है। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
0: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
0: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
1: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
0: चलो
2: चलो
0: चलो,
2: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
3: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने

0: पार्टी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।
1: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
2: अर्शद,
3: चेतना,
2: कुसुमलता,
3: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY। Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI।
2: आपका साइबर रक्षक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

0: संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
3: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
1: परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत की विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
4: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिकों सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल का वादा बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष $863 अरब का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामूहिक भागीदारी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
5: सर, 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
6: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
7: हमेशा पूछो WHY Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक।
8: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
9: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
6: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
7: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक।
8: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
9: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
6: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
7: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक।
8: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
9: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
6: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
7: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:10 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास सम्मेलन के समापन सत्र में होंगे शामिल। एआई के विनियमन पर अगले महीने आएगा परामर्श पत्र। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीप फेक जैसे खतरों से बचाव पर रहेगा जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में उद्योगपतियों से की मुलाकात। प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में जोश टीम की शुरुआत की। टीबी उन्मूलन में जुटेंगे माय भारत स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट्स। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मंत्री और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर सहकारी संघवाद को मजबूत करना और योजनाओं के बेहतर परिणाम हासिल करना है। सम्मेलन में पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे चार प्रमुख विषयों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई और साइबर सुरक्षा के साथ इसके फायदे और संभावित नुकसान पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का जोर एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और डीप फेक जैसे हानिकारक इस्तेमाल से लोगों को बचाने पर रहेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने युवाओं से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी प्रतिभा, कौशल और रचनात्मकता का उपयोग करने का आह्वान किया। नोएडा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता युवाओं को नए अवसरों के लिए तैयार करने में अहम है। डॉ. मुरुगन ने बताया कि वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच भारत में करीब 17 करोड़ 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा देने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मुंबई में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, नर्मदापुरम के रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जोन, धार के पीएम मित्र पार्क और उज्जैन के मेडिकल डिवाइसेस पार्क की जानकारी दी। इन बैठकों में अलग अलग कंपनियों ने विद्युत पारेषण, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई। भिलोसा इंडस्ट्रीज ने धार के पीएम मित्र पार्क में 2500 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश और 3750 से ज्यादा रोजगार का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों को जनवरी 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया।
1: 25 पॉलिसियां लागू करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपने सारे व्यापार व्यवसाय सरलीकृत आधार पर ये पॉलिसियां भी लगाई। 1 लाख एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक आज भी मध्य प्रदेश के पास है। फार्मा सेक्टर भी है, माइनिंग से लगाकर एनर्जी, फॉरेस्ट से लगाकर हैवी इंडस्ट्री भी है, एमएसएमई भी है, लघु कुटीर उद्योग भी है। और हमारे राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय के लिए 1 करोड़ लगाने वाले का भी वही सम्मान है जो 1 लाख करोड़ लगाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि पार्टी को हार का ठीकरा आयोग पर फोड़ने के बजाय अपने प्रदर्शन और संगठन पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी चुनाव प्रक्रिया के तहत कांग्रेस को केरल और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला, इसलिए हार और जीत में अलग अलग रवैया नहीं होना चाहिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि कांग्रेस को अपने कमजोर होते जनाधार, नेतृत्व और संगठन की स्थिति पर विचार करना चाहिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल में ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ टीम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि माय भारत के स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट्स टीबी उन्मूलन अभियान में घर घर स्क्रीनिंग और जागरूकता के प्रसार में मदद करेंगे। प्रदेश में अब तक सघन स्क्रीनिंग से 1,12,000 टीबी मरीजों की पहचान कर उनका इलाज शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों, निक्षय मित्रों और बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के दूसरे दिन पर्यटन के नए क्षेत्रों और रोजगार बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस सत्र में एडवेंचर टूरिज्म, MICE आधारित इवेंट इकोनॉमी और वन्य जीव पर्यटन को स्थानीय गांवों, युवाओं, होमस्टे, गाइड व हस्तशिल्प से जोड़ने की रणनीति पर मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि पर्यटन की सफलता सिर्फ पर्यटकों की संख्या से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों और प्रकृति को होने वाले फायदों से तय होनी चाहिए। सेवा संकल्प अभियान के तहत बालाघाट स्थित कमला नेहरू महिला मंडल में विकसित भारत संकल्प सभा तथा सिवनी मालवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों की सहायता के लिए खंडवा में सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम तथा गुना के जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में सहायक उपकरण वितरित किए गए। वहीं आगामी 12 अक्टूबर को नीमच के होटल सनराइज ग्रैंड में यूथ एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में पीएनजी सप्लाई शुरू होने के बाद ही संबंधित उपभोक्ताओं की एलपीजी सप्लाई बंद करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। जिले की 4 सोसाइटियों में पीएनजी सुविधा शुरू होने के बाद उन्हें एलपीजी फ्री घोषित किया गया है। वहीं पीएनजी वाले क्षेत्रों में एलपीजी बंद करने से पहले उपभोक्ताओं को 90 दिन के नोटिस देने का प्रावधान है। भोपाल में एसआईआर के दौरान सूची से बाहर हुए मतदाताओं के नामों की जांच के लिए बीएलओ मैदान में काम कर रहे हैं। आज और कल शहर की 7 विधानसभा सीटों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जहां पर लोग अपने नाम की दोबारा जांच करा सकते हैं। जांच में पात्र पाए जाने पर स्थायी रूप से बाहर हुए या फिर पते पर नहीं मिले मतदाताओं के नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। वहीं 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए एडवांस में फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिला न्यायालय परिसर में मीडिएशन नेशन 3.0 के तहत विशेष मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने मुरैना के पिछड़ा वर्ग छात्रावासों का निरीक्षण किया। झाबुआ के आजीविका भवन में दो दिवसीय आकांक्षा आजीविका हाट का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों को बोर्ड ने नोटिस जारी किए हैं। जबलपुर के पीएमसी विद्यालयों में कृषि विभाग द्वारा स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम संचालित किया जाएगा। नीमच के महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्कूल में मुख्यमंत्री निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत 39 मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। आगरमालवा के शासकीय नेहरू कॉलेज में पुलिस सेवा की तैयारी कर रही 100 बालिकाओं को शैक्षणिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खंडवा जिले के 29 निजी अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों को पीएम राहत योजना के तहत अब त्वरित कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। गुना जिले के ग्राम शाहपुर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा शिक्षा में एआई के प्रयोग विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धार के महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं जांच शिविर लगाया गया। सीहोर जिला जेल में बंदियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और मंदसौर में 70वीं राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन ग्वालियर, सागर, उज्जैन और भोपाल की टीमों ने अपने अपने मुकाबले जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास सम्मेलन के समापन सत्र में होंगे शामिल। एआई के विनियमन पर अगले महीने आएगा परामर्श पत्र। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीप फेक जैसे खतरों से बचाव पर रहेगा जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में उद्योगपतियों से की मुलाकात। प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में जोश टीम की शुरुआत की। टीबी उन्मूलन में जुटेंगे माय भारत स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट्स। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY. Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
6: विविध भारती,
4: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
5: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
4: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
5: वीर सैनिकों की जयमाला
4: और हंसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
5: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
7: सखी सहेली,
5: बॉम्बे टॉकीज और
8: सेल्यूलॉइड के सितारे,
5: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
4: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
5: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
4: मन का सुकून दिल की आरती,
5: सुरीली संदली।
9: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
10: वाओ,
3: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
11: बदलो बदलो आदत बदलो,
12: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
11: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।

0: शहडोल केंद्र है। कार्यक्रम किसानवाणी के लिए श्रोताओं आइए जुड़ते हैं
1: ये
0: आकाशवाणी भोपाल
1: आकाशवाणी
0: से।
1: मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसानवाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी किसान भैया बहन हरो जेठे स्याने और बड़े बुजुर्गों को खूब स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करें अपनी रानी बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम जय सीताराम भैया पहुंचे आप सबके और बताओ जरा कैसे का हाल चाल है। देखो हम फिर आ गए आपके लाने आपको अपनो कार्यक्रम किसान वाणी लेके और तबियत पानी तो सब बढ़िया है ना और बाल गोपाल सब नाने हैं भैया हम आप की सबकी मंगल कामना सोई करत है कि आप सब जने खुश रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें। भैया हरो देखो अब तो तारापन के जे हैं बिल्कुल अब जाबे वारे हैं और माता रानी की आवक की तैयारी जो है वो जोर शोर से चलन लगी है। गांव गांव में पंडाल सजाए जा रहे हैं घर द्वारों की सफाई सजावट चल रही है। तो उतई दूसरी तरफ हमारे पुरखों के लाने दो ही टाइम को न्योता पानी भी बिल्कुल चल रहे हैं। तो भैया हरो देखो कि ऐसे समय पे अपने स्वास्थ्य को ध्यान धरबो बहुत ही जरूरी है। और भैया आज के सानवाड़ी कार्यक्रम में अपन खूब सारी बदखाव सोई कर है और अपन अरे लोकगीत भी सुन है। तो भैया हरो एक बहुत ही जरूरी आप और उनके संगे साझा करने हथी जानकारी की भैया हरो आज है विश्व दृष्टि दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाओ जात है और भगवान ने अपन सबके सबसे अनमोल चीज दी है वह है हमारी आंखें। विश्व दृष्टि दिवस मनावे को जैया मकसद है कि अपनी आंखों को दृष्टि पे लाने हमें जागरूक रहने हैं समय समय पे आंखों की जांच कराने हैं स्वस्थ रहने हैं और भैया हरो अपन के अपनी आंखों को पूरे देखभाल सोई करन है। अपन जो चीज देखा थे कि अपने आसपास की दुनिया अगर देखने हैं पढ़ने हैं सीखने हैं तो हमें तो अपनी आंखों पे तो ही निर्भर रहने पड़ा था। तो भैया हरो अगर आप और उनके कोई भी समस्या होए ऐसी कि आंखों से संबंधित तो तुरंत में हमें क्या करने चाहिए जांच कराने चाहिए और अपने मन से कोई भी दवाई नहीं डालने चाहिए बिल्कुल चिकित्सक की सलाह से ही पूरी काम करने चाहिए। और आजकल तो अपन देख ही रहे हैं मोबाइल फोन कंप्यूटर जो दूसरे डिजिटल उपकरण है वे हमारी जिंदगी को हिस्सा बन गए हैं। लंबे समय तक अपन स्क्रीन में देखा रहे थे जैसे कहोगे आंखों में थकान हो जाते जलन सूखोपन और धुंधला दिखाई देने वाली समस्या हो जाते हैं। तो भैया हरो स्क्रीन देखा समय बीच बीच में अखियों को आराम जरूर दें पर्याप्त रोशनी में पढ़ें और मोबाइल और कंप्यूटर

0: की स्क्रीन से हमको थोड़ी दूरी सुई बनाने चाहिए। तो जरूरी ये है कि भैया हरो अपन आंखों को अच्छे से ध्यान रख लें, पौष्टिक आहार जरूर लें, हरी सब्जी मौसमी फल और पोषक भोजन अपन के लाने बहुत जरूरी होता है। भैया हरो आज हम एक ऐसी पहल और आधुनिक तकनीक की भी और बात करबो जा रहे हैं जो कि किसानन को जानबो बहुत जरूरी है। खेती किसानी आसान बेहतर और ज्यादा लाभकारी बनत जा रही है और देखो हम बात कर रहे हैं ई किसान मित्र की। भारत अपने कृषि प्रधान देश का हाथ है, हमारी खेती किसानी पूरी जो है वो किसान के मेहनत पे टिकी है। किसान अन्न पैदा करत है, खेती करत है और उनमें मौसमी बीज खाद कीटनाशक और मंडी भाव सरकारी योजना और नई कृषि तकनीक से जुड़ी जो सारी जानकारी होती है उसकी जानकारी की भी जरूरत पड़ा है। अब सोचो भैया अगर सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो किसान कई अपने नुकसान से बच सकता है। ऐसे समय पर डिजिटल तकनीक किसानन की बहुत ही काम आत है ना और साथ ही बन जाव है। ई किसान मित्र में जैया सोच को माध्यम है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए किसान खेती से जुड़ी हर जानकारी बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकता है। मौसम की जानकारी मिल जाए तो बुआई सिंचाई और फसल कटाई की योजना सही ढंग से बन सकत है। बाजार में अगर फसल के भाव अपन के सही जानकारी मिल जाए तो किसान अपनी उपज सही समय पर सही जगह बेच के उचित दाम पा सकता है। तो जितनी जरूरी खेती बाड़ी की जानकारी है उतने जरूरी मोबाइल और इंटरनेट को सुरक्षित और सही उपयोग जानना भी जरूरी है। तो एक लाने नबक पन करत है किसान ई मित्र। तो कोई भी ऑनलाइन योजना या जानकारी पे भरोसा करने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत से पुष्टि जरूर कर लेना चाहिए। अपनी निजी जानकारी बैंक खाता पासवर्ड और ओटीपी कोई भी अनजान व्यक्ति के अपन के नहीं देने हैं। और भैया हरो ई किसान मित्र केवल एक डिजिटल माध्यम नहीं बल्कि किसान और कृषि विशेषज्ञ के बीच जानकारी को पुल बन सकता है। गांव के पढ़े लिखे युवा भी इनमें बड़ी मदद कर सकते हैं। वे अपने परिवार और आसपास के किसानन को मोबाइल पर कृषि संबंधी सेवाओं को इस्तेमाल कर वो सिखा सकते हैं। तो कह सकते हैं कुल मिला के की बात यह है कि हम सभी मिलके खेती किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ें और अपने किसानन को डिजिटल रूप में मजबूत बनाएं। सही जानकारी सही समय पर लिया गया निर्णय सही फैसलों और आधुनिक तकनीक किसान की सफलता की मजबूत कुंजी बन सकत है। किसान भैया हरो अपन सभी मिलकर सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। और भैया हरो और कपास जो है बहुत ही अच्छी हमारे देश की नगदी फसल है और कई किसानों की आमदनी को महत्वपूर्ण जरिया भी है। तो जरिया विषय पे आज हम विस्तार से जानकारी ले हैं जब बारे में बात कर रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश परसाई। तो चलो मिलाते हैं भैया हरो और इनकी सुनत है बातचीत आधुनिक तकनीक अपनाकर कपास की खेती कैसे अपन बढ़ा सकते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, कपास एक खरीफ की नकदी फसल है जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, बीज बुवाई के लिए सही समय क्या होता है और कीट नियंत्रण के बारे में उचित जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सतीश परसाई जी को। आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक है। नमस्कार सतीश सर, आपको
2: नमस्कार। किसान भाइयों राम राम।
1: सर आज हम बात करेंगे आधुनिक तकनीक से कपास उत्पादन विषय पर।
2: जी तो किसान भाइयों आप सभी जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को अपना इसमें कपास की क्या स्थिति है संदर्भ में। जहां तक मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन का प्रश्न है, हम 9 जिले में कपास का उत्पादन लेते हैं और सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष 6.5 लाख से 7 लाख हेक्टेयर के बीच में कपास का क्षेत्र जो रहता है मध्य प्रदेश में। जहां तक 9 जिलों का प्रश्न है, सबसे बड़ा हिस्सा हमारा 3/4 या 75% भाग केवल निमाड़ में होता है। निमाड़ में भी हम बात करें तो खरगोन सबसे बड़ा कपास उत्पादक है जहां 2.25 लाख हेक्टेयर में कपास लगाते हैं। बड़वानी दूसरा है, 90,000 हेक्टेयर में वहां कपास लगता है। खंडवा तीसरा है जहां 50,000 हेक्टेयर में कपास लगता है। बुरहानपुर निमाड़ अंचल का चौथा जिला है जहां 40,000 हेक्टेयर कपास लगा रहे हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा क्षेत्र जो है हमारा वो मालवा अंचल का है। मालवा में धार सबसे बड़ा जिला है जहां 2.25 लाख हेक्टेयर के आसपास कपास लगता है। रतलाम है 35,000 के आसपास। तीसरा झाबुआ में है उसी प्रकार से 30,000 के आसपास है अलीराजपुर में, और एक जिला इन सब से हटकर के है वो है पांडुरंग, जो अलग है इनसे, काफी दूर है, और महाराष्ट्र का जो नागपुर का क्षेत्र है, बरार वाला क्षेत्र है, उससे लगा हुआ। वहाँ करीब 50,000 हेक्टेयर में कपास किसान लगाते हैं।
1: जी सर, बीटी कपास की लोकप्रियता के क्या क्या कारण ऐसे हैं?
2: लोकप्रियता के लिए तीन महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बीटी नहीं था तब तीन प्रकार की इल्लियां आती थी, अमेरिकन, फिर चितकबरी डेंडू छेदक और गुलाबी डेंडू छेदक। ये समस्याएं पूरी तरह से बीटी आने के बाद दूर हो गई। जब हम परंपरागत कपास लगाते थे तो 15 से 18 बार कीटनाशक फसल अवधि में लगता था, अब केवल 3-4 बार हम कीटनाशक दवा डाल करके और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। इससे पर्यावरण का हित हुआ है, कीड़ों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक की संभावना समाप्त हुई है, मित्र कीड़ों का संरक्षण संवर्धन हुआ है, पर्यावरण हितैषी साबित हुआ है हमारा बीटी कपास। दूसरी फायदा इसका हुआ है कि उत्पादन देवड़ा है। तीसरा बड़ा फायदा किसान भाइयों को ये हुआ है कि बीटी के आने के बाद रबी फसल लगाने की संभावना बनी है, गेहूं चना हमारे किसान लेने लगे हैं। उसका कारण यह है कि दो बार चुनाई कर ली, इतना हमको उत्पाद मिल जाता है, लागत पूरी वसूल हो जाती है और हमको लाभ भी मिल जाता है। अक्टूबर के अंत में वो सारा कपास उनका चुनाई हो जाती है उसकी दो या तीन, और खत्म करके नवंबर में सही समय पर रबी मौसम की फसल भी अपनी लगा लेते हैं, साध लेते हैं उसको।
1: कपास का अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन सी और नवीन तकनीकों का
2: उपयोग? हम नवीनतम तकनीकों में एक तो HDPS बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसको हम उच्च सघनता वाली तकनीक कहते हैं। सामान्य रूप से हम कपास जो लगाते हैं वो 3 से 4 फीट कतार से कतार की दूरी रहती है और पौधे से पौधे की दूरी भी 3 फीट के आसपास लेते हैं। अब ऐसी संभावना बन गई है कि कतार से कतार की दूरी 1 फीट ले रहे हैं और आधा फीट पौधे से पौधे की दूरी, और इसके लिए हम विज्ञान को ऐसी जातियां विकसित करना पड़ी है जो फैलती कम है, खड़ी खड़ी बढ़ती है। आज प्रति इकाई HDPS की मदद से 4-4, 5-5 गुना पौध संख्या हम खेत में बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से एक ELS लंबे रेशे वाली, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जिसको कहते हैं, और लंबे रेशे वाला जो कपास होता है उसकी बाजार मूल्य है वो बहुत ज्यादा मिलता है, उसकी मांग बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से हम नीली और पीली पट्टियों का उपयोग बता रहे हैं किसानों को नई तकनीक के रूप में, जिससे रस चूसने वाले कीड़े सारे के सारे जो है उसमें चिपक जाएंगे, छोटे हरा मच्छर है, सफेद मक्खी है, माहू है, तेला है, फुदका है, ये सब चिपक जाएंगे और हमको दवा के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी या न्यूनतम हो जाएगी, तो ये फायदा ले रहे हैं। टी आकार की खूंटी लगा रहे हैं, मान लीजिए हमारी फसल 3 फीट की ऊंचाई की है तो हम उस समय किसान से अपेक्षा करते हैं कि वो 4 फीट ऊंचाई पर जाकर के कम से कम 1 एकड़ में 20 टी आकार की खूंटी लगाए। इसका फायदा क्या मिलता है उसको कि खूंटी पर पक्षी बैठते हैं और यदि कहीं आपके पौधों पर कोई इल्लियां हैं, उनका प्रकोप चल रहा है, तो वो झट से इल्लियों को खा जाते हैं, तो आपका प्राकृतिक नियंत्रण हो जाता है। इसी प्रकार से हम प्रकाश प्रपंच की बात कर रहे हैं कि किसान भाई इसको लगाएं तो जो रात्रि में संवेदनशील या प्रकाश संवेदनशील कीड़े हैं वो इसमें आकर्षित होंगे। और मैं तो किसानों को ये भी आए दिन कहता हूं कि पूरी रात प्रकाश का साधन जला करके रखने की, केवल सूर्यास्त जब होता है तब जला दे, और 9 बजे या 10 बजे जब उनका सोने का समय है उस समय उसको बंद कर दे। तो कीड़ों के आने का समय भी केवल 3 या 4 घंटे का है, यानी सूर्यास्त से लेके 9 या 10 बजे की अवधि में वो इधर उधर विचरण करते हैं, उसके बाद तो वो एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठ जाते हैं। एक स्प्लैट ट्यूब हमने विकसित की कपास के लिए, विशेषकर गुलाबी इल्ली के लिए, एक मटर के दाने के बराबर हम जेल हमने बनाया है, पेस्ट बनाया है, ये एक मटर के दाने के बराबर 3 मीटर के अंतर पर, और वो भी एक कतार में पहले लेंगे फिर बगल की कतार में लेंगे, आड़ा तिरछा क्रम में, सर्पिल गति जिसको कहते हैं, उसमें चलते हुए पूरे खेत में ये हम लगाते हैं 125 ग्राम का एक ट्यूब किया आता है, तो ये एक एकड़ के लिए उपयोगी होता है। और सामान्य रूप से एक बार इसको लगा दिया तो 30 से 45 दिन की अवधि के लिए आपको गुलाबी इल्ली के लिए कोई दवा के उपयोग की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या है, ये भ्रम पैदा करती है नर पंखियों में, भ्रमित होकर के वो जो गंध हमने मटर के दाने के बराबर लगाई उसके आसपास ही वो नर पंखी घूमती रहती है, मादा के पास पहुंच नहीं पाती है, यानी हम उनका परिवार जो है वो नियोजित कर ले।
0: सर क्या जैविक कपास की भी बेहतर संभावना है?
2: बहुत बेहतर संभावना है, और हमारे लिए तो बहुत गर्व का विषय है कि जैविक कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। 10 या 11 राज्य में हम कपास लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी जैविक कपास नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश में ही सारा जैविक कपास, देश का नहीं विश्व में हम आगे हैं। उसमें भी खरगोन जिला सबसे आगे है, और साधारण तौर पर आपका देवड़ा और दुगना भाव मिलता है। यदि आपका सामान्य कपास 8,000 रुपए के भाव जा रहा है तो ये 15,000-16,000 रुपए के हिसाब से जाता है, तो ये फायदा किसानों को है। तो निश्चित रूप से जैविक कपास का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
0: सर प्राकृतिक रंगीन जो जैविक कपास है उसमें हमारे वैज्ञानिकों का क्या योगदान है?
2: प्राकृतिक रंगीन कपास का प्रश्न है, वो मध्य प्रदेश की देन है, पूरे विश्व को मध्य प्रदेश ने दिया। इसके अलावा हमने गुलाबी, हल्का हला, ये रंग भी विकसित किए। और प्राकृतिक रंगीन कपास अभी थोड़ी सी व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण व्यावसायिक रूप से किसानों के खेत में ये नहीं लग पा रहा है, लेकिन आने वाला समय हम इसको किसानों को भी लगाना संभव होगा।
0: सर नीम आधारित भी कुछ कीटनाशकों का हम प्रयोग?
2: नीम आधारित कीटनाशक का उपयोग तो बहुत महत्वपूर्ण है, और आज की जो हमारी वर्तमान अवस्था की अनुशंसा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुशंसा है कि शुरू के 60 दिन तो केवल नीम आधारित कीटनाशक ही कपास में डालें। हम कहते हैं कि 5 ml नीम तेल 1 लीटर पानी इस अनुपात में मिलाएं। किसान क्या करता है कि 15 लीटर पानी टंकी में लेता है साधन, तो अब 75 ml लगता है, मिलीलीटर लगता है, तो वो सीधी उड़ेल देता है आपकी टंकी में और छींटने लगता है अपना नीम तेल। क्या होता है कि थोड़ी देर बाद नीम तेल घुलनशील नहीं है तो पानी में तैरता हुआ रहता है तेल बिंदु के रूप में, और नोजल चोक कर देता है, किसान परेशान होता है। तो थोड़ी सावधानी यदि पंसारी के दुकान के नीम तेल में किसान भाई करते हैं तो इसकी बहुत उपयोगिता है, यानी 100 रुपए लीटर में किसान बड़ा अच्छा कीटनाशक बना लेगा। उसके लिए करना ये है कि केवल 1 लीटर पानी में आपका 75 ml नीम तेल को मिलाना है, हाथ से मथना है, मथने के बाद फिर उसको टंकी में डालें, 15 लीटर पानी में डालें, और वहां भी एक सावधानी देने की आवश्यकता है, चिपको जो आम बोलचाल की भाषा में किसान भाई बोलते हैं, टीपाल या सेंडोविट के नाम से मिलता है चिपकने वाली दवाई, वो मिलाना है। कभी कभी ये होता है कि गाँव में ये टीपाल और सेंडोविट मिलते हैं
0: जी।
2: तो उसके लिए भी मैं किसान को एक तरीका बता देता हूँ, साधारण तरीका है, हर घर में डिटर्जेंट हो गई, कपड़े धुलते ही हैं, कपड़े धुलने का पाउडर हर घर में, तो आधा चम्मच एक टंकी के पीछे यदि वो पाउडर डालेगा तो उससे भी हम टीपाल या सैंडोविट या चिपको का काम ले लेंगे। तो ये करेंगे तो निश्चित रूप से नीम तेल की भी उपयोगिता है।
0: सर कीटनाशकों का उपयोग कब और किस प्रकार हमें करना चाहिए?
2: कीटनाशकों का उपयोग आजकल जो नया हमारा विज्ञान कह रहा है कि कीटनाशकों का आवश्यकता मूलक, यानी प्रत्येक कीट के लिए एक पैमाना हमने निश्चित कर रखा, इतना प्रकोप होगा तभी हमें दवा डालना है, उस पैमाने पर कीट का प्रकोप आने पर ही कीटनाशक उपयोग करें, अन्यथा हमको कोई उपयोग की जरूरत नहीं।
0: अंत में आप हमारे किसान भाइयों को और क्या जानकारी देना
2: चाहेंगे? मैं अंत में किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा महत्वपूर्ण रूप से कि किसान भाई कीटनाशक की मात्रा में मनमानी, तो मात्रा में मनमानी ना करें पहली बात, दूसरी एक दवा का लगातार उपयोग से बचें। यदि एक दवा का बार बार उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से कीड़ों में कीटनाशक के प्रति प्रतिरोधकता विकसित होगी और वो कीटनाशक फिर कोई काम की। किसान जाता है विक्रेता के पास, आदान विक्रेता के पास, आदान विक्रेता व्यवसायी है, अपना फायदा देता है, सकता है। वो एक के साथ दो तीन, उनने कहा ये फफूंद नाशक भी ले जाओ, ये कीटनाशक भी ले जाओ, ये वृद्धि नियामक भी ले जाओ, तो वो तीन चार तरह की चीजें ले दे देता है। अब क्या होता है, कई बार ये इनमें आपस में मिलनशालिता नहीं और वो विपरीत असर कर देते हैं, फसल प्रभावित होती है, सूखने लगती है, फिर किसान दौड़ता है वैज्ञानिक के पास अपने महाविद्यालय में या कृषि विज्ञान केंद्र में, फिर वैज्ञानिक कहता है भैया आपने क्या किया था, ये गलती की है आपने, इसके आप परिणाम देख रहे हैं। तो मिलान ना करें, कॉकटेल से बचें, यदि करना जरूरी है तो आजकल तो रेडीमिक्स आ रहे हैं, यानी मिक्सचर जो मिश्रण, मिश्रित कीटनाशक बाजार में चलन में, तो मिश्रित कीटनाशकों को प्राथमिकता दें, उन्हीं को लें। तो ये अंत में कहना चाहूंगा, धन्यवाद, राम राम किसान।
1: आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे किसान भाई भी ये जानकारी के माध्यम से अपना बहुत अच्छे से कपास को उत्पादन करेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: खूब इन्होंने जानकारी सुन रही डॉक्टर सतीश परसाई ने कि कैसे कपास की खेती में भैया हरे कैसे आमदनी बढ़ ले सका थे। और अब हो रहा है किसान वाणी में एक मनोरंजन को टाइम, तो भैया हरो अपन और सुनत है मन बहलाओ के लावे माता रानी की भक्ति में डूबी जसुरीली प्रस्तुति बहन गिरजाबाई की आवाज में।

0: किसान भैया हरो,
1: आबे वाली फसलों के लाने भी काम काज के लावे भी अपन के तैयारी बहुत जरूरी होत है कि अगर तैयारी अच्छी रहत है तो कहत है कि उत्पादन भी खूब अच्छो मिलत है। तो रबी की फसलों की तैयारी कैसे करें और की पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रतनदीप सोनी। तो अपन सुनाते हैं जा लघु वार्ता।
2: आज हम आपको रबी फसलों की तैयारी के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। सबसे प्रमुख बात है रबी फसलों के लिए यदि गेहूं के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो गेहूं की खेती बारानी खेती भी होती है, अर्धसिंचित भी होती है और सिंचित खेती भी होती है। इसी तरह से रबी फसलों में दलहनी फसलें हैं, चना है, मटर है, मसूर है, इनकी खेती होती है। इसी तरह से आपका तिलहनी फसलों में सरसों है, अलसी है, कुसुम है, इनकी खेती होती है। कहने का मतलब ये है कि फसलें कोई भी यदि किसान भाई लेते हैं उन सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तम किस्म का बीज होना चाहिए। उत्तम किस्म का मतलब जिसकी अनुवांशिक शुद्धता हो, दूसरी बात है उसका अंकुरण प्रतिशत अच्छा हो, तीसरी बात यह है कि उसमें कोई इनर्ट मैटर माने अपशिष्ट पदार्थ न हो जो उसके साथ मिले हुए हो। इसके लिए बीजों का श्रेणीकरण किया गया है कि प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए, कम से कम प्रमाणित बीज, आधार बीज ये किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं जिनकी अंकुरण क्षमता सुनिश्चित होती है और उनकी आनुवांशिक गुण सुनिश्चित होते हैं। यह बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित भी होता है, तो इनको बोना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको जो भी फसल हम लगा रहे हैं उनको लगाने के लिए जो वैज्ञानिक अनुशंसाएं हैं फसलों को लगाने के लिए, बीज दर, कतार से कतार की दूरी, उनका अनुशंसा अनुसार पालन अवश्य करना चाहिए किसान भाइयों। इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण जरूरी बात यह है कि फसल हम कोई भी लगाएंगे उसके पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अब पोषक तत्वों की आपूर्ति का प्रयास यदि उस खेत में जिसमें लगा रहे हैं उस खेत की मिट्टी का परीक्षण करके प्रतिवेदन में जो अनुशंसाएं हैं उन अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग होता है तो फसल के उत्पादन में पोषक तत्वों के कमी के कारण या अधिकता के कारण उत्पादन प्रभावित नहीं हो पाता है। ये दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरी बात यह है कि जो भी हम बीज लगा रहे हैं वह बीज रोग मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब कि उसमें रोगों का प्रादुर्भाव न होने पाए और रोगों का की उपस्थिति मिट्टी के अंदर भी होती है, हवा के अंदर भी होती है, पानी के अंदर भी हो सकती है, इसलिए उनका बीजोपचार करना नितांत आवश्यक है। रोगनाशी रसायनों से या जैविक फफूंदनाशी से यदि हम करते हैं और करके बोते हैं तो हमारा पौधा स्वस्थ होगा और जब स्वस्थ होगा, रोग मुक्त होगा तो उसकी पैदावार बेहतर होगी। तीसरी बात यह है कि बीज उपचार पोषण में प्रबंधन में सहयोग के लिए और विशेष कुछ पोषक तत्वों को उपलब्धता के लिए किया जाता है तो जैविक उपचार होता है। अनाज वर्गीय फसलों में एजोटोबैक्टर के माध्यम से होता है और दलहनी फसलों में विशेष रूप से राइजोबियम कल्चर से होता है जो कि वातावरण के नत्रजन को एकत्र करती है और पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। ठीक इसी तरह से फास्फोरस तत्वों के उपलब्धता, जमीन के अंदर जो फास्फोरस तत्व उपलब्ध है वह आसानी से उपलब्ध हो सके उसके लिए पीएसबी कल्चर का उपचार करते हैं, ये पोषण के संबंध में। इसके अतिरिक्त ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम फसल बो रहे हैं तो उसको पोषक तत्व तो तरल रूप से मिलते हैं तो सिंचाई के साधन हो, पर्याप्त हो, फसल की मांग के अनुसार हो, यह व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही साथ जो हम पोषक तत्व तो दिए हैं, सिंचाई पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन खेत में उगने वाले यदि खरपतवार हैं उनका समसामयिक नियंत्रण नहीं हो पाया तो उनकी वजह से उत्पादन में गिरावट आती है और उत्पादन गिरावट आती साथ ही गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए समसामयिक खेत में उगे हुए खरपतवारों का नियंत्रण भी आवश्यक है। उसके लिए यांत्रिक साधन हैं जो मानव चलित भी हैं, इंजन चलित भी हैं, बैलों से भी चलने वाले हैं, तो जितना अपने क्षेत्र है उस हिसाब से व्यवस्था अनुसार अपन कर सकते हैं किसान भाई। अब खरपतवारों का नियंत्रण सामान्यतः फसलों में 30 से 35 दिन की अवस्था में पूर्ण होना चाहिए। ऐसा यदि हम प्रारंभिक तौर में रबी फसलों की तैयारी में करते हैं तो हमारी फसलें बहुत अच्छा उत्पादन दे सकेंगी।
1: और किसान भैया हरों अब बता दें आपके मंडी के भाव गेहूं 2400 से 3016 रुपया प्रति क्विंटल भाव में बिकत देखोगा चना 6500 से 7600 रुपया प्रति क्विंटल के भाव में रहो उड़द की बात करें तो उड़द 9350 रुपया से 9911 रुपया प्रति क्विंटल के भाव में बिकत देखोगा लेकिन भैया हरों मंडी के भाव फसल के किस्म गुणवत्ता और आवक जावक के हिसाब से घटत बढ़त रहे थे तो भैया हरों अपनी मंडी के पास के भाव देख सकते हैं पास की मंडी के भाव आप और देख सकते हैं तो भैया हरो अब देखो घड़ी की जो टिक टिक है बा कह रही है कि रानी बिन्ना अब हो जाओ तुम कनक चिमानी हो रही है बिरिया की टाइम तो भैया हरो अब देव हमें अनुमति बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज की किसान बाड़ी कार्यक्रम में जो आपने जानकारी हासिल करी वह आप लोगों के लाने बहुत उपयोगी हुई है तो भैया हरो आप सबकी मंगल कामना के संगे अपनी रानी बहन के दें अनुमति और स्वीकार करें रानी बहन की राम राम जय सीताराम
0: क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहा है तेरे बीजू का
3: उतला बोल रहा
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
3: मतलब
0: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग तो पहली वाली बात कहा
3: परम तो सब यही डाले
0: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
3: सच है
0: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
3: ठीक है भाई मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। और अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय है हर घर बेहतर जीवन।
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार, और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में, और जिन अलग अलग पहलुओं की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो, या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो, या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है, और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार, और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
4: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में। पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इंपैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा, या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
3: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
4: जी
3: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
5: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे। इसको बनाने का टाइम लगेगा, बिल्कुल 4-5 साल, 3 साल लगते हैं बनाने में। इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीज़ों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन अ गुड बेंचमार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंचमार्क फॉर मेनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट विल एंड हैव चेंज्ड the ease of living for our families.
3: Okay.
5: तो उस benchmark से आपसे आगे बात बढ़ाते।
3: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
4: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाने लगा, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें घर में रहकर आप आपके बच्चे हैं आपके जो परिवार हैं उसकी देखभाल करिए आप, तो आप मेरे लिए घर जो है इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
3: एक होलिस्टिक
4: पूरा पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका, वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
3: बिल्कुल,
4: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी
3: जी, बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिस इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
4: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी, इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवर और होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है ये अब हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ है, आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था
3: जी।
4: इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, अब कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
3: जी।
4: तो ऐसा नहीं घर केवल उनके लिए, अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है, वो घर है इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा। और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं हम कैसे रह रहे हैं, उनको ये भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक
3: यानी काफी लेयर्ड टर्म है जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इस पे?
5: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है और शायद उससे पहले आता है कि टॉयलेट हो
3: जी,
5: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें तो प्रधानमंत्री जी ने आपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गांव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस हैं, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, जो काम पूरा नहीं हुआ था
6: जी।
5: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो अच्छा पानी है और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास हैं कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
3: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे, दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो से पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
4: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में भी देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था, वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी, निहार का जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था, इकोनॉमिक्स में बोलते ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
3: बिल्कुल।
4: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था,
3: बिल्कुल,
4: टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं ये कहूंगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट। महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर,
3: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा, शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है।
5: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया उस घर की तो दशा उसी दिन बदल गई। अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इसका, आंकड़ा मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा, उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करूं, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था, उस टाइम पे एवरी सेकंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था, एवरी सेकंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई

0: तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ चाहिए
1: जी,
0: रिफ्लेक्ट कर आप। अब सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे। 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप। अब सोचो आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया। ये स्पीड है, तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए। स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था, और आज हमें 79% 80%। 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में। ये सोचने वाली बात, जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली। मल्टीप्लाई करिए आप, और वो पता कितनी पॉपुलेशन है। आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़, अमेरिका 33, ब्राजील 21, और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5-6-7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील उतने बड़े हाउस होल्ड्स, उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की। ये सर खास बात है इस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स हैं पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
1: जी,
0: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई, और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
0: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई। ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
1: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
0: स्वच्छ हो भारत, गाँव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है, और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जांपल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई, और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
1: जी।
0: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाया, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
1: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में।
2: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में राइट
1: जी,
2: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूं तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह।

0: ये अपने आप नहीं आया है। सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए कुछ चीजें समझने की, हर बात के लिए हम सरकार को बोले कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है। ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती।
1: बिल्कुल
0: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा। सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती। सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती।
1: बिल्कुल,
0: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो एश्योरेंस है। आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों
1: अलग अलग नजरियों
0: दोनों के रिस्पांस में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
1: जी।
0: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जिस बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब। और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, आप पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं। फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के अब उसके देखियो बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, जो
1: जन जनता की कैटेगरी में जी।
0: तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
2: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहले जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
1: जी,
2: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग 9 करोड़ लोग डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
1: जी,
2: इतने लोग, और वो किस तरह से, इंडिविजुअल पे जाइए, कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है, तो क्या होगा? या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो, और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना। तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये, कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद हो गए, इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है, वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियां कवर हो रही हैं ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है। 1900 से ज्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डालनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इन परिवारों को। तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों की, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज लगभग 90,000 से 1,00,000 लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर आजकल। अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूंगा, मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
3: जी,
2: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए, या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2,00,000 करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो, उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड है, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसे ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है, और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
1: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से,
2: इन स्कीमों से। ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
1: जी,
2: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है, 6,000 की पॉपुलेशन के लिए उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है, और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है। वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं, या पिछली बार ये आपने देखा, मेरा डायबिटीज मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए, वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर

0: इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
1: देखिए फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीजें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है
0: जी।
1: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कह रहे थे, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। तो आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व ये है
0: जी।
1: और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल।
1: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसको कवरेज का, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
0: जी।
1: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इंपैक्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या? कोई नहीं,
0: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, विषय था हर घर बेहतर जीवन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
4: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों

0: रेडियो और बबली फिल्म का ये गीत आपने सुना सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें थी, गुलजार के बुल थे, संगीत शंकर एहसान और लॉय का था। इसी के साथ खत्म होता है आज का चित्रलोक कार्यक्रम।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं प्रतीक्षा समाचारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to rupees 10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशो भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
5: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
5: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 रुपए पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
7: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुर्गन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers. Raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees. No changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential. Calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government will release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
9: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
8: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings.
9: GST council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
8: Ms. Sitharaman said the council has also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today.
10: Today, telecom and digital technology is so important. तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है. फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है. एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है. जब उसको फोन पर आए उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है.
8: Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
10: Deep fakes kitni badi chunauti ban chuki hai ye bhi hum dekh rahe hain, isliye zaruri hai ki hum iske liye ek global framework par kaam kare. Sarkaren, technology companies, telecom operators aur financial institutions sabhi ko is framework se judna. मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है, और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना सुनते हैं।

पीछे जा रही थी। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम हैं। राजा राम वानकुंद्रे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म थी।

सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपना गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।

0: हिसाब दो।
1: सन 1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में राशि ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र।

सन 1965 में आई फिल्म दो दिल इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर।

0: जाएगी।
1: बात 1966 की है, फिल्म आई सगाई। ये SD नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी।
0: खफा ना होना अगर मैं पूछूं।

मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में राजश्री के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेंद्र वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राजश्री ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत SH बिहारी के थे और संगीतकार थे OP नैयर।

सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहां था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं। और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

अब राशि की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कलाकार थे।

0: अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहाग रात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।
1: मोहे लगी रे

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राष्ट्रीय की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई हैं।

0: आज हमने अभिनेत्री राशि के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: ये है विविध।
1: रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है। जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम

0: करचोरी के मामले में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है। टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के विश्वविद्यालय इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबन करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिकू कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुन मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज बारिंग का। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital this evening.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything.

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर अपने बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।